ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की

23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026। प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा

0: में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का विचार। विषय है समय की महत्ता और वाचक स्वर हैं श्री अमरचंद अगरचंद नाहटा के।
2: संसार में यदि सबसे बहुमूल्य या अनमोल कोई वस्तु है तो वह है समय। धन आदि पदार्थ एक बार चले जाने के बाद फिर कभी मिल सकते हैं, पर बीता हुआ समय वापस नहीं मिल सकता। हमारी आयुष्य का जितना समय निहित है उसे बढ़ा नहीं सकते, और प्रतिक्षण उस निहित समय में से आयुष्य की घड़ियाँ छीनती ही जा रही हैं। यदि उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो अंत में पछताना ही रहेगा कि हम चाहते और प्रयत्न करते तो आयु के उन क्षणों में बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर सकते थे, पर हमने ध्यान नहीं दिया। अब पछताने से क्या होगा, कहा है अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे समय तो तेजी से बीत रहा है, उसका अनुभव हमें नहीं होता, पर जब हम घड़ी का सेकेंड का कांटा सामने रखते हैं तो एक कांटे के घूमने में जो समय बीता वह समय कितना लंबा है इसका हम अनुभव कर पाए तो ऐसे सेकंड, मिनट, घंटे और दिन की बीतते ही जा रहे हैं।

0: अतः हमें अपने समय का विभाजन कर लेना चाहिए। प्रातःकाल से उठकर रात के सोते समय तक जितने घंटे व मिनट होते हैं उनमें हम करने योग्य कामों का विभाजन ठीक से कर लें तो हमारे सोचे हुए या सभी कार्य नियत समय पर होते रहेंगे, और जो समय बचेगा उसमें स्वाध्याय, भगवत भजन, चिंतन आदि कर सकेंगे। वर्तमान में हमने अपने समय का विभाजन नहीं किया है, इसलिए हमारे सभी काम ढीले होते जा रहे हैं और अच्छे व ज़रूरी कामों के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। यह शिकायत प्राय सभी लोग करते हैं। नियत समय पर काम नहीं करने के कारण दूसरे व्यक्तियों को भी बड़ी परेशानी होती है। आपने किसी से मिलने का समय दिया और दूसरे कामों में लगे रहे या समय पर निपटा नहीं पाए, तो जो व्यक्ति आपके लिए दिए हुए समय पर आएगा और आप उस समय नहीं मिलेंगे तो उससे कितनी परेशानी होगी। इसी तरह यदि आपने अपने को दिन का समय नियमित नहीं किया तो रसोई, घर वालों को, आपकी पत्नी को प्रतीक्षा करने में कितना समय बीतेगा। और यदि नियत समय पर आते हैं और जाते हैं, खाते हैं, और तो खुद ना खुद को परेशानी होती है न दूसरों को। इसके लिए आप अपने अधिकांश काम स्वयं करने की आदत डालिए, जिससे काम समय पर कर सकेंगे, दूसरों की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। क्या आप पराधीन नहीं रहेंगे? दूसरे ने समय पर कोई भी काम नहीं किया तो आपको क्रोध आएगा, उससे अनुचित व्यवहार करने पर आपकी संबंधों में कटुता आएगी। अतः समय पर अपने सभी काम स्वयं करिए।
1: निश्चय ही समय जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है, जो एक बार निकल जाए तो वापस कभी नहीं आती। समय का सदुपयोग ही सफलता और प्रगति की कुंजी है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सम्मान और उपलब्धियां प्रदान करता है। हर क्षण हमें कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसलिए आइए समय की कीमत समझें और प्रत्येक पल का सार्थक उपयोग करें, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। तो श्रोताओं, सुना अपने कार्यक्रम आज का विचार। विषय था समय की महत्ता। वाचक स्वर थे श्री अगरचंद नाहटा के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हो चुके हैं और समय कर रहा है इशारा कि समय हो गया है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। तो करते हैं कार्यक्रम का श्री गणेश। जय गणेश गणनाथ, हरिओम शरण के भक्तिमय स्वर के साथ।

गणेश के आह्वान के साथ शुभारंभ हुआ हमारे भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। अब वंदन करते हैं वीर बजरंगी हनुमान का, शकुंतला श्रीवास्तव के स्वर में।

उषा सेठ के स्वर में इस मीरा भजन के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बाल कांड के दोहा संख्या 151 से दोहा संख्या 153 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु

रामचरितमानस गान के इस अंक में आपने सुना बालकांड के दोहा संख्या 151 से दोहा संख्या 153 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोता, हमारी सांध्यकालीन सभा में रात्रि 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती।

और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम यानी कि रात्रि 9:30 पर संस्कृति भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आपके लिए। कार्यक्रम बीकानेर दर्पण प्रस्तुत होगा रात्रि 8 बजे, जिसमें बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक प्रदर्शन किया जाएगा। वाचक स्वर रहेंगे श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा की, संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम, जिसमें विषय रहेगा मानसून और भारतीय कृषि। वाचक स्वर रहेंगे श्री बजरंग सारस्वत के। लोक भजन आप सुनेंगे 6:50 पर। सुप्रभात कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 7 बजे, जिसमें वार्ता सुनवाई जाएगी आपको, योग एक संपूर्ण जीवन शैली। वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर महेंद्र कुमार। हमारी पहली सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर, इसके बाद में 10:35 पर और दोपहर 2:30 पर भी आप फिल्म संगीत का लुत्फ ले पाएंगे। कार्यक्रम सौरभ रात प्रातः 8:30 पर प्रस्तुत होगा, जिसमें व्यंग्य वार्ता सुनिएगा, यातायात नियम और घमंडी लाल। वार्ताकार है श्री आत्माराम भाटी। 8:30 पर कार्यक्रम सौरभ में सुगम संगीत प्रस्तुत होगा 8:45 पर, जबकि लोक संगीत का समय रहेगा 9:10 का। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद आमिर खां का राग मियां की मल्हार में गाया ख्याल। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का 12वां संस्करण आप सुनेंगे प्रातः 10 बजे। हेलो बीकानेर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा प्रातः 11 बजे से और सुगम संगीत सुनेंगे आप दोपहर 12:10 पर। बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। आज की प्रस्तुति किरण शर्मा और साक्षी गोस्वामी की रहेगी। हमारी सांध्यकालीन सभा में युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे आप संध्या 5:05 पर। आज की बात का विषय रहेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर और अनुकूलित योग। फिल्म संगीत सांध्यकालीन सभा में 6:05 पर और उसके बाद सुनिएगा 9:15 पर। और ग्रामीण जगत कार्यक्रम होगा हमेशा की तरह संध्या 7 बजे। श्रोताओं, यह था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विषय ज्ञान मानसून और भारतीय कृषि। वाचक स्वर हैं श्री बजरंग सारस्वत के।

भैया ने घना घना राम राम सा आप सबरो स्वागत है। आज कार्यक्रम में बात करा मानसून रे बारे में। देखो सा मानसून रे बारे में आपा कई बार चर्चा सुना नाम सुना के मानसून आ रियो है, इत्ता तारीख रा मानसून आवेला, मानसून आई गयो, अब के मानसून कमजोर है, अब के मानसून आछो है, का पछे सितंबर में आपा सुना के मानसून जाऊनालो है या मानसून गयो। अब कई जना मन में जिज्ञासा होवे के मानसून है कहीं जेको आ रियो है जा रियो है, तो आज कार्यक्रम में आपा इन बारे में ही बात कराला कि मानसून काई है और भारतीय कृषि में इरो काई स्थान है। तो मानसून हवावारो वो एक प्राकृतिक सिस्टम है जिन मायने हवाया निश्चित मौसम रे मायने समुद्र सु जमीन कानी चाले। आ हवावा में करोड़ों टन पानी जको है वो भाप बनर छुपोड़ो होवे और वो ही आगे जार बारिश करावे। ए जकी हवावा है ए भारत रे हिंद महा

0: सागर, अरब सागर और बंगाल री खाड़ी सू आपर देश ताई पुगे। प्रकृति रो टाइम टेबल जको है समय चक्र वो बहुत ही पक्को है। अप्रैल और मई रे महीने में सूरज री गर्मी सू जमीन घनी तप जावे। जद जमीन गर्म होवे तो भी रे ऊपर री हवा भी गर्म होर हल्की हो जावे और ऊपर आसमान में उठ जावे। इनसु अठे नीचे हवा रो एक खाली इलाको यानी लो प्रेशर जोन बन जावे और समुंदर री ठंडी नम हवा भारत कानी दौड़ पड़े। आज की हवा है आ ही बरसात लावे। ए हवा मा जब धरती माथे पुगे तो हिमालय और पश्चिमी घाट रा ऊंचा पहाड़ और सामी भीत बनर उबा हो जावे। आंसू टकरार मानसूनी हवामा ने ऊपर चढ़नो पड़े। ऊपर तापमान ठंडो होवे जिनसु भाप ठंडी होर बड़ी बड़ी बूंदारे रूप में बदल जावे और बरसात रे रूप में नीचे पड़े। इन्हें साइंस में ओरोग्राफिक रेन क्या करे। असल में केरलम प्रदेश जिको है अपर देश रे दक्षिण में, केरलम अपर देश रे दक्षिण पश्चिम कोने में अरब सागर रे किनारे बस्योड़ो है। कई मानसूनी हवावा अरब सागर सु ही भारत का नहीं आवे। इन वास्ते जद ए हवावा चाले तो सबसु पेली केरलम रे तट सु टकरावे। तो अपर अठे आ बात अपा सुनया करा हा के मानसून सबसु पेली केरल में आवे बीरो ओ कारण है। अपर देश री 70% जनसंख्या है बा खेती बाड़ी माथे निर्भर करे है। मानसून में अच्छी बिरखा होवे है और इनसु किसान भाया ने खेती सारू नदी तालाब कुआर मायने पर्याप्त पानी मिल जावे। भाई लोग अपर देश में दो मानसून सिस्टम काम करे। पेलड़ो दक्षिण पश्चिम मानसून ओ जून सु सितंबर तई चाले और ओ देश री 75% बरसात सारू जिम्मेदार है। और दूजो है उत्तर पूर्व मानसून जिको अक्टूबर सु लेर दिसंबर तई सक्रिय रेवे। ओ दक्षिण भारत सारू घणो महत्व है। इन्हें लौटता मानसून भी क्या करे।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता मानसून और भारतीय कृषि विषय पर, वार्ताकार श्री बजरंग सारस्वत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं एक लोक भजन। स्वर है पुष्पा सैनी का, भजले सुआ हरिनाम।

उगते सूरज की सुनहरी किरणें जब धरती पर उजास बिखेरती हैं, पक्षियों का मधुर कलर वातावरण में एक नई ऊर्जा खोलता और शीतल समीर जो कल रात की बारिश से और ज़्यादा ताज़ी हो गई है वो पूरे जीवन में ताजगी भर देती है। तब एक नया दिन नई उम्मीदों के साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। हर सुबह अपने एक साथ नया अवसर लेकर आती है, कुछ सीखने का, कुछ अच्छा करने का, समाज को बेहतर बनाने का और उसमें अपना योगदान देने का। इसी सकारात्मक भावना और ऊर्जा के साथ मैं हूं मालकों साहब का स्वागत करता हूं कार्यक्रम सुप्रभात में। बात शुरू करते हैं श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। यह दिवस एल्बिनिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इसे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान और समान अवसरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक अवस्था है, इसे कोई बीमारी कहना उचित नहीं होगा, जिसमें शरीर में मेलानिन नामक वर्णक की कमी हो जाती है। इसके कारण त्वचा, बालों और आंखों के रंग में कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देता है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि ब्लॉन्ड कलर के बाल हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को अक्सर दृष्टि संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, तथा उनकी त्वचा सूर्य की किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है। दुर्भाग्यवश कई बार जानकारी के अभाव में समाज में इनके प्रति भ्रांतियां और पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और यह समझें कि एल्बिनिज्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक आनुवांशिक स्थिति है। समाज की वास्तविक प्रगति तब मानी जाएगी जब हर व्यक्ति को समान सम्मान, समान अवसर और गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो। तो एक संवेदनशील समाज जो है वो वही होता है जब मतलब उसमें विविधताओं को भी स्वीकार किया जाता है और बड़े ही पॉजिटिव वे में। तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा को आगे बढ़ने का अगर अवसर मिले तो वही एक संवेदनशील समाज है। श्रोताओं, किसी भी व्यक्ति की पहचान केवल उसकी बाहरी रंग रूप से होती भी नहीं है, बल्कि उनके विचारों, संवेदनाओं और व्यक्तित्व से ही असली उसकी पहचान होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस भी हमें यही संदेश देता है कि हर व्यक्ति को उसकी आंतरिक क्षमताओं और मानवीय गुणों के आधार पर पूरा सम्मान मिलना चाहिए और समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि ये कहता है कि मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, तो मेरी मोहब्बत में है कितना असर, पास आके देखो ना और दिल में उतर के देखो ना, चेहरा क्या देखते हो।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। बनाना

श्रोताओं, बात करते हैं प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की। यह कार्यक्रम समाज के अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, आवास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब विकास की धारा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। समावेशी विकास और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत बनाने में ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षा, अवसर और संसाधनों तक सभी की समान पहुँच हो, तभी राष्ट्र की प्रगति और अधिक सुदृढ़ होती है। श्रोताओं, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब युवाओं को शिक्षा, अवसर और सही दिशा मिलती है, तब वे न केवल अपना भविष्य संवारते हैं बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। युवाओं के उत्साह उनकी उमंग और सपनों को स्वर देता है हमारा अगला गीत कार्यक्रम का। सुनते हैं

0: श्रोताओं, सुप्रभात कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक वार्ता। विषय है योग एक संपूर्ण जीवन शैली। वार्ताकार हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार।
1: योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वह कितनी प्राचीन है, इसका प्रारंभ किसने किया और कब किया, यह गहन शोध एवं अनुसंधान का विषय है। पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र सुंग के राजपुरोहित थे, को ही योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि की रचना है। इस ग्रंथ के चार पाद हैं। सूत्रों की संख्या 194 है। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, परंतु महत्व की दृष्टि से सब दर्शनों में महान है। योग शब्द के अनेक अर्थ हैं। युजीर योगे तथा युद्ध समाधो

धातु से योग शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है जुड़ना या समाधि को प्राप्त करना। अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ना या समाधि को प्राप्त करना। समाधि को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का प्रबल साधन के रूप में महर्षि पतंजलि के निर्देश दिया है। साधना की पद्धतियों में पतंजलि का अष्टांग योग प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक माना जाता है, जिसके 8 अंग हैं। यम, यम का अर्थ है संयम। यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, ये भी 5 हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर साधना। साधन, स्थिरता और सुखपूर्वक एक ही स्थिति में बहुत देर तक बैठने का नाम आसन है। ध्यान के लिए पद्म, सुख एवं स्वास्तिक आदि आसन हैं। प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास के विच्छेद का नाम। प्रत्याहार, इंद्रियों के रूप रस आदि से हटकर नियंत्रण, अर्थात आहार पर नियंत्रण। धरणा, चित्त को नाभि चक्र, आज्ञा चक्र आदि किसी स्थान में स्थिर करना। ध्यान, एकाग्रचित अवस्था में ध्यान करना। समाधि, ध्यान की ऊपरी प्रकाष्ठा को समाधि अवस्था कहते हैं। समाधि में ध्यान और ध्याता का भान नहीं होता, केवल ध्येय रहता है। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, परंतु यह अधिकार व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। योग के माध्यम से हम एक बेहतर रोग प्रतिरक्षा तंत्र और अपनी बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं और हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक स्वास्थ्य केवल बीमारियों से मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता के साथ स्वस्थ होने की ऊर्जावान अनुभूति भी शामिल है। इसलिए तो कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें विशाल क्षमता है। योग उपचार के सर्वाधिक शक्तिशाली औषध रहित तंत्रों में से एक है। शारीरिक स्तर पर योग बल, सहन शक्ति, क्षमता और ऊर्जा के विकास में मदद करता है। यह व्यक्ति को मानसिक स्तर पर उन्नत, एकाग्रता, शांति और संतोष के साथ सशक्त भी बनाता है। योग एक निरंतर की जाने वाली क्रिया है, जिसमें अभ्यास का महत्व है। अभ्यास के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। योग के अभ्यास की समझ विकसित करना व इस समझ को अपने जीवन और रहन सहन के अनुसार प्रयोग में लाना, बच्चों में स्वस्थ आदतें और जीवन शैली विकसित करना, बच्चों में मानवीय मूल्य विकसित करना। योग के अभ्यास से शारीरिक, भावात्मक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना। योग में शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से अभ्यास में नियमितता आवश्यक है। योग के लिए धैर्य एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपको प्रयासों में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। समय के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। प्रतिस्पर्धा की भावना योग के मार्ग में निश्चित रूप से एक बाधा होती है। योग के अभ्यास को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। अधिकांश आसन, प्राणायाम और क्रियाएं खाली पेट या बहुत कम भरे पेट में की जानी चाहिए। योगाभ्यास के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। योग को जल्दबाजी या जब आप थके हुए हों नहीं करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए अच्छा हवादार, साफ, विघ्न रहित स्थान चुनें। योगाभ्यास कठोर सतह पर नहीं करना चाहिए। दरी, चटाई या कंबल का उपयोग किया जा सकता है। योगाभ्यास से पूर्व नहा लेना ठीक रहता है। व्यक्ति मौसम की आवश्यकता अनुसार गर्म या ठंडा पानी काम में ले सकता है। योगाभ्यास से संपूर्ण स्वास्थ्य का

0: विकास होता है। योग का विशेष रूप से अर्थ शरीर और मन का जुड़ाव है। यह स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के उन्नयन और रखरखाव में योगदान पैदा करता है। हम योगाभ्यास द्वारा स्फूर्ति, संतुलन, समन्वय, सामर्थ्य जैसी क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। ये शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। यह शरीर के सभी तंत्रों के बेहतर ढंग से कार्य करने में सहायक होता है। इस प्रकार योग व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण के लिए सहायक हैं। सूर्य नमस्कार, यह शक्ति, सामर्थ्य और लचक को बढ़ाने में मदद करता है। यह एकाग्रता में सुधार करता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है। यह पूरे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह पूरे शरीर को लचीला बनाता है। जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हो, उन्हें सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ताड़ासन। संस्कृत शब्द ताड़ का अभिप्राय ताड़ के पेड़ से है। इसमें शरीर ताड़ जैसा सीधा दिखता है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। यह बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यह आलस्य और सुस्ती दूर करने में मदद करता है। वज्रासन। यह एक मात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन लेने के तुरंत बाद किया जा सकता है। स्वास्तिकासन। सु का अर्थ है शुभ और अस्थि का अर्थ होना, अर्थात शुभ होना या स्वस्थ होना है। अनुलोम विलोम। यह हृदय और फेफड़ों की क्षमता में सुधार करती है, इसलिए यह श्वसन संबंधी रोगों जैसे अस्थमा के लिए अच्छा है। यह आलस्य दूर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग एक संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक है। बिना स्वस्थ मस्तिष्क के हमारा शरीर दक्षतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता। यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, तो हमारे लिए मन को अनुशासित करना और बेहतर एकाग्रता प्राप्त करना आसान होगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी वार्ता योग एक संपूर्ण जीवन शैली। वार्ताकार थे डॉक्टर महेंद्र कुमार। श्रोताओं, आज दुनिया के अनेक देशों ने योग को अपना लिया है और आप सभी को 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। श्रोताओं, बात करते हैं 12 साल सुशासन, सेवा और जनकल्याण के। यह अवसर बीते 12 वर्षों में देश में हुए कार्यों, प्रशासनिक सुधारों और जनकल्याणकारी पहलों पर दृष्टि डालने का एक अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान आधारभूत संरचना, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और जनसेवा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गई है। देश भर में सड़क, रेल और हवाई संपर्क के विस्तार पर विशेष बल दिया गया है। आधुनिक एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशनों के उन्नयन और नए हवाई अड्डों के विकास ने संपर्क व्यवस्था को एक क्रांति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। जनधन योजना के जरिए करोड़ों, यानी कि लगभग 50 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है, जबकि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों ने व्यापक स्तर पर प्रभाव डाला है। कोविड-19 महामारी के दौरान जो टीकाकरण अभियान चला, उसे तो कौन भूल सकता है। भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि कि हम विश्व गुरु के रूप में अपनी खुद की वैक्सीन को भी हमने डेवलप किया। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी लखपति दीदी जैसी पहलों ने रोजगार, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का बेहतरीन कार्य किया है। तो लक्ष्य निर्धारित है हमारा, हमें आगे बढ़ना है, अपने देश को साथ लेके चलना है। चक दे इंडिया।

चलते चलते बस इतना कि जीवन की राह में सीखने और आगे बढ़ने और दूसरों के लिए कुछ करने का अवसर हर दिन मिलता है। एक जागरूक नागरिक, स्वस्थ समाज और संवेदनशील सोच ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। नई सुबह की ताजगी आपके विचारों में बनी रहे, सकारात्मकता का प्रकाश आपके हर निर्णय को दिशा देता रहे, सफलता आपके प्रयासों की साथी बने और खुशियाँ आपके जीवन का स्थायी उत्सव। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मालकोंस आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीतकार कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कविता कृष्णमूर्ति और शान के गाए इस बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो कल रात हुई बारिश की आपको याद दिलाएगा। लकीर फिल्म से हमने गीत लिया है, महबूब ने इसे लिखा है और संगीत है बेहतरीन AR रहमान का। पैगाम क्या लाया है सावन, सुनते हैं।

हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं फिल्म तक्षक का ये गीत सुजाता त्रिवेदी के स्वर में। इस गीत को लिखा है महबूब ने, संगीत ए आर रहमान का है। करते हैं बूंदों से बातें।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोता, मौसम और संगीत का रिश्ता बहुत पुराना है और आप महसूस कर ही रहे होंगे कि बीकानेर में पश्चिमी विक्षोभ का असर हमने आपके दिलों तक पहुंचा दिया है। चाहे आप देश के किसी भी या पूरे विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, जब सुरीले स्वर, मधुर धुन और खूबसूरत शब्द एक साथ मिलते हैं तो वे मन में एक अलग ही आनंद का संचार कर देते हैं। तो अब बारी है एक ऐसे गीत की जो अपने मधुर संगीत और सदाबहार अंदाज के कारण आज भी श्रोताओं की इस मौसम में तो पहली पसंद है। फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत है और अपने दौर का कह सकते हैं चुनिंदा गीत। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का ये ट्रायो है गजब का। संगीतकार राजेश रोशन ने इसमें जो रस घोला है और जो अंदाज प्रस्तुत किया है वो महसूस करते हैं बेहतरीन गीत के साथ।

क्यों संभल जाए। श्रोताओं, जब बारिश का मौसम अपने साथ न जाने कितनी यादें और कितने एहसास, कितनी अनकही बातें लेकर आता है। कभी भीगी हुई राहें मन को गुनगुनाने लगती हैं, तो कभी बारिश की हल्की फुहारें दिल के किसी पुराने, एकदम पुराने से एक कोने को छू जाती हैं। बरसात की बूंदों में कुछ तो बात होती है कि दिल की खामोशियों से इनकी रोज मुलाकात होती है। इन्हीं भीगे भीगे एहसासों के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं, फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का। एश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज़ है, तनिष्क बागची ने इसे लिखा है, संगीत भी है तनिष्क बागची का। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये बारिश की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे।

इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक

0: विला केरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने

0: क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला

0: सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kyrgios for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of

0: India. The Statesman, on its editorial page under the caption Demanding Proof, writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flame-back woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम। सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उर्दू काव्य पाठ। शायर है सरताज अली रिजवी।
3: चंद कतात मुलायजा फरमाए कि चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, हमने एक रस्म निभाने की बहुत कोशिश की, और हमने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों पर, हमने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों पर उसकी आवाज बनाने की बहुत कोशिश की। एक कथा और समत फरमाएं कि अकेलेपन की हर गहराई का एहसास होता है, अकेलेपन की हर गहराई का एहसास होता है, मुझे महफिल में जब तन्हाई का एहसास होता है, और किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, अभी तक पीठ पर बीनाई का एहसास होता है। और आखिरी कथा ये है कि क्या बतलाऊँ तुमको मैं क्या क्या टूटा, क्या बतलाऊँ तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतज़ार की शाख से जब पत्ता टूटा, क्या बतलाऊँ तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतज़ार की शाख से जब पत्ता टूटा, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज़, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज़, बहुत दिनों में कानों का रोजा टूटा, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज, बहुत दिनों में कानों का रोजा टूटा। गजल के चंद अशआर समाअत फरमाए कि वो जिसके हाथ में तिनका नहीं था, वो जिसके हाथ में तिनका नहीं था, नदी में बस वही डूबा नहीं था, वो जिसके हाथ में तिनका नहीं था, नदी में बस वही डूबा नहीं था, और कफस का दिल अभी टूटा नहीं था, कफस का दिल अभी टूटा नहीं था, परिंदा इसलिए छूटा नहीं था, बहुत सी खुशबुएं आ जाती लेकिन, बहुत सी खुशबुएं आ जाती लेकिन, हवा ने रास्ता छोड़ा नहीं था, और तुम्हारा शहर, तुम्हारा शहर छूटना ही था एक दिन, गुजारा अब वहां होता नहीं था। और शेर देखें बतौर खास कि कमाने तीर तरकश सब थे लेकिन, कमाने तीर तरकश सब थे लेकिन, कमाने तीर तरकश सब थे लेकिन, चलाते कैसे अंगूठा नहीं था, कमाने तीर तरकश सब थे लेकिन, चलाते कैसे अंगूठा नहीं था। मख्ता समत फरमाए कि इसे भी इश्क

की आदत थी फानी, इसे भी इश्क की आदत थी फानी, ये बूढ़ा शहर तब बूढ़ा नहीं था। इसे भी इश्क की आदत थी फानी, ये बूढ़ा शहर तब बूढ़ा नहीं था। और एक गज़ल के चंद अशआर और देख लीजिए कि ज़बां से कहते हुए आफरीन छोड़ गए, ज़बां से कहते हुए आफरीन छोड़ गए, तमाम गोशों को गोशा नशीन छोड़ गए, और हुदूदे बंदगी देती रही सदा उनको, हुदूदे बंदगी देती रही सदा उनको, जो सजदा गाहों पे अपनी जबीन छोड़ गए, हुदूदे बंदगी देती रही सदा उनको, जो सजदा गाहों पे अपनी जबीन छोड़ गए। और एक शेर देखिएगा कि कफस के बाद लिखा उम्र फिर लिखा सयाद, कफस के बाद लिखा उम्र फिर लिखा सयाद, परिंदे शाख पे बस लफ्ज तीन छोड़ गए, कफस के बाद लिखा उम्र फिर लिखा सयाद, परिंदे शाख पे बस लफ्ज तीन छोड़ गए, और फिर एक रोज वो जंगल खंगालने वाला है, फिर एक रोज वो जंगल खंगालने वाले, नजारे ले गए और दूरबीन छोड़ गए, फिर एक रोज वो जंगल खंगालने वाले, नज़ारे ले गए और दूरबीन छोड़ गए। और अब इस दयार में कोई नहीं है दानिशमंद, अब इस दयार में कोई नहीं है दानिशमंद, इसे तो कब के नगर के जहीन छोड़ गए। और मख्ता समात फरमाए कि तुम्हारे जैसे बहुत से अदीब फानी यहाँ, तुम्हारे जैसे बहुत से अदीब फानी यहाँ, तलाशते हुए खुद को जमीन छोड़ गए, तुम्हारे जैसे बहुत से अदीब फानी यहाँ, तलाशते हुए खुद को जमीन छोड़ गए। गजल का मतला देखें कि शौक पाला है इनके सारी का, शौक पाला है इनके सारी का, काम है कितनी जिम्मेदारी का, शौक पाला है इनके सारी का, काम है कितनी जिम्मेदारी का, और जाल में फंसने भर की देरी थी, जाल में फंसने भर की देरी थी, खौफ जाता रहा शिकारी का, जाल में फंसने भर की देरी थी, खौफ जाता रहा शिकारी का, और रस्सियाँ सांप लग गई बनने, रस्सियाँ सांप लग गई बनने, खेल जमने लगा मदारी का, रस्सियाँ सांप लग गई बनने, खेल जमने लगा मदारी का, और सारा जंगल उदास किसने किया, सारा जंगल उदास किसने किया, जिक्र पेड़ों से करके आरी का, सारा जंगल उदास किसने किया, जिक्र पेड़ों से करके आरी का, और हार पर हार जब मिली फानी, हार पर हार जब मिली फानी, रौब घटने लगा जुआरी का, हार पर हार जब मिली फानी, रौब घटने लगा जुआरी का, शौक पाला है इनके सारी का, काम है कितनी जिम्मेदारी का। और एक गज़ल मुकम्मल देख लीजिए कि दिल के मुआमलात निमटने की रात है, दिल के मुआमलात निमटने की रात है, जो कल गया था उसके पलटने की रात है, दिल के मुआमलात निमटने की रात है, जो कल गया था उसके पलटने की रात है, और उसको मैं अपने साथ रखूं किस तरह भला, उसको मैं अपने साथ रखूं किस तरह भला, ये रात अपने आप से कटने की रात है, उसको मैं अपने साथ रखूं किस तरह भला, ये रात अपने आप से कटने की रात है, और जब नींद आ रही है तो आएंगे ख्वाब भी, जब नींद आ रही है तो आएंगे ख्वाब भी, यानी तबर्रुकात के बटने की रात है, जब नींद आ रही है तो आएंगे ख्वाब भी, यानी तबर्रुकात के बटने की रात है। और एक शेर बतौर ख़ास है कि कागज़ पे लिख रहा हूँ तेरा नाम बार बार, कागज़ पे लिख रहा हूँ तेरा नाम बार बार, हाथों से तेरे नाम को रटने की रात है, कागज़ पे लिख रहा हूँ तेरा नाम बार बार, हाथों से तेरे नाम को रटने की रात है, कागज़ पे लिख रहा हूँ तेरा नाम बार बार, हाथों से तेरे नाम को रटने की रात है, और तह करके रख दो आज ज़मीन और आसमान, तह करके रख दो आज ज़मीन और आसमान, मैंने सुना है सबके सिमटने की रात है,
तह करके रख दो आज जमीन और

आसमान, मैंने सुना है सबके सिमटने की रात है, और मकता यूं है कि आना कहीं पे फानी बदन छोड़कर यहाँ, आना कहीं पे फानी बदन छोड़कर यहाँ, ये रात तो हिजाब के हटने की रात है, आना कहीं पे फानी बदन छोड़कर यहाँ, ये रात तो हिजाब के हटने की रात है, दिल के मामलात निमटने की रात है, जो कल गया था उसके पलटने की रात है। और आखिरी गज़ल तरन्नुम में मतला कि दर्द जब आखिरी पड़ाव में था,

आओ मैं था, शेर हाजिर करता हूं कि नींद कम बख्त फिर वही टूटी, नींद कम बख्त फिर वही टूटी, नींद कम बख्त फिर वही टूटी, ख्वाब का शहर जब बसाओ में था, ख्वाब का शहर जब बसाओ में था।

ख्वाब का शहर जब बसाओ में था। और शेर ये मुलाजा फरमाया कि उसकी आंखों से आश्क बहते थे, उसकी आंखों से आश्क बहते थे, उसकी आंखों से आश्क बहते थे, मेरा सब कुछ उसी बहाव में था, मेरा सब कुछ उसी बहाव में था, उसकी आंखों से आश्क बहते थे, उसकी आंखों से आश्क बहते थे, मेरा सब कुछ उसी बहाव में था। और एक शेर थोड़ा अलग मिजाज का कि कैसे दुनिया को फिर नजर आता, कैसे दुनिया को फिर नजर आता, कैसे दुनिया को फिर नजर आता, घाव दर असल दिल के घाव में था, घाव दर असल दिल के घाव में था, कैसे दुनिया को फिर नजर आता, कैसे दुनिया को फिर नजर आता, घाव दर असल दिल के घाव में था। और मक्ते से पहले का शेर है कि हाथ पाकर मेरी समात का, हाथ पाकर

0: आओ मैं था। और मकता समाप्त करें कि चुलबुलापन शरारतें शोखी, चुलबुलापन शरारतें शोखी, चुलबुलापन शरारतें शोखी, फानी क्या क्या तेरे स्वभाव में था, फानी क्या क्या तेरे स्वभाव में था, दर्द जब आखिरी पड़ाव में था, मैं नए गम के मोल भाव में था।
1: आना बेहतरीन गजल। सहर करके रख दो आज जमी को और आसमां, मैंने सुना है सबकी किस्मत में ये रात है, और मोहताज

0: है कि आना कहीं पर फानी बदन छोड़कर यहाँ। ये रात तो हिजाब के हटने की रात है, दिल में मामलात निपटने की रात है, जो कल गया था उसके पलटने की रात है। बेहतरीन काव्य पाठ उर्दू का, शायर सरताज अली रिजवी का।
1: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कार्यक्रम सौरभ के अंतर्गत आपने सुना सरताज अली रिजवी का उर्दू काव्य पाठ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की इस गीत के साथ। नज़ीर बद्र बाकरी ने इसे लिखा है और संगीत है जगजीत सिंह का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा, नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन के 1,491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6,000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और आवारा पशुओं से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। पाली जिले में आयोजित एक शिविर में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये शिविर नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
1: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने, 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी छूट दी है। 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग

ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 28 लाख 50 हजार मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से 25 लाख 90 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारां के शाहबाद कस्बे में कल 2 घंटे तक बरसात हुई।

0: नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है, वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। प्रारंभ करते हैं समंदर खां, सत्तार खां और रमजान खां के स्वर में बोली प्यारी लागे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सोनी देवी के स्वर में ये हरजस।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सीमा मिश्रा, राकेश काला, शंभू, प्रिया, गीतांजलि और दीपशिखा के स्वर में अंताक्षरी।

इस बेहतरीन अंताक्षरी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अमीर खां का राग मियाँ की मल्हार में गाया ख्याल। विलंबित रचना के बोल हैं करीम नाम तेरो, जबकि द्रुत रचना के बोल रहेंगे बरसन लागी बदरा। तो सुनते हैं उस्ताद अमीर खां का राग मियाँ की मल्हार में गाया ख्याल।

भगवान हमारे भगवान।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमीर खां का राग मियां मल मियां की मल्हार में गाया ख्याल। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं और अब आप प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का 12वां संस्करण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
3: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से।

0: जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो, तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में, उस समय में उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके, जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके, मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार

0: होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूंगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज़ रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंदन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के

0: लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे, जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की, तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम, शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सोल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए, प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं,
1: जी
0: जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके, जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया।

0: लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है, और वो भार धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जेन अल्फा होगी, बीटा होगी, जेन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी के जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया, जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में

0: आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर का की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह के, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कंपटीशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए हैं। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे से पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से

0: ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प

0: डगमगाया हुआ था। उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में

0: अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम की 12वीं कड़ी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 10:35 हो चुके हैं और अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत के साथ, लिखा है इसे गुलशन बावरा ने, संगीत RD बर्मन का है। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर ज...

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की

90 साल और एक स्वर्णिम सफर। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

फिल्म संगीत के एक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं आखिर में एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म का नाम है सागर, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है आरडी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। पेश है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर।
1: हेलो बीकानेर।

0: कार्यक्रम हेलो बीकानेर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी अपने निर्धारित समय पर हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम हेलो बीकानेर। श्रोताओं, अतीत से सीखें, वर्तमान में जिएं और भविष्य के प्रति आशावान रहें, यही सिद्धांत हमें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। और वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो हम व्यतीत कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियां। जी बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और आज गर्मी की छुट्टियां हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं और कल हम कैसे व्यतीत किया करते थे, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे अपने श्रोताओं से कि क्यों खास हैं गर्मी की छुट्टियां हमारे लिए और हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संयोजन है श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। और आज का कार्यक्रम हेलो बीकानेर लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का हमारे आज के पहले श्रोता के फोन कॉल से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: मैं भगवान दास बंसल, रिटायर्ड इंजीनियर, संक्षेप कॉलोनी सुभाषपुरा बीकानेर।
0: जी भगवान दास जी, कैसे हैं आप?
1: गुरु विशेष आपकी बात है, ये बड़ी है जी।
0: बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया है आज।
1: लगाया तो बहुत, दो महीने हो गए, लगा ही नहीं।
0: जी, दो महीने से आप ट्राई कर रहे हैं और आज आपका कॉल लग गया।
1: आज लगा जी आपने।
0: जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी और हमारी आज बातचीत हो रही है।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी, तो बताइए भगवान दास जी, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो आप गर्मी की छुट्टियों को कैसे व्यतीत करते हैं?
1: गर्मी की छुट्टियां बैठे घर में जी, पूरी रहती

0: छुट्टियाँ आपके लिए तो वैसे हमेशा ही छुट्टियाँ हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। एक ठहराव, एक स्थिरता लाने का जो एक मकसद होता है वो इन दिनों रहता है हमारा। तो आपने बचपन में गर्मी की छुट्टियों को लेकर कोई क्रेज आपको रहा हो और आज भी वो बातें या वो यादें?
1: गर्मी की छुट्टियों में क्रेज तो बहुत होता था, गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ जाया करता था, जैसे शिमला है, नैनीताल है, इलाकों में जाया करता था।
0: जी, तो आपने गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाया है, खूब घूमे फिरे हो।
1: जब मेरी मैरिज होगी तो इकट्ठे जाते थे, जब मैं अकेला था तो भी जाता था।
0: जी जी जी, और आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आप गर्मी की छुट्टियों को देखते हैं?
1: आज के परिप्रेक्ष्य में तो गर्मी की छुट्टियाँ हमें पॉजिटिव नेचर से रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। दुख बांटने से घटता है और ये अपना जो है सुख बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो बताइए भगवान दास जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: इस समय मैडम आज क्रांति फिल्म का जिंदगी की न टूटे कड़ी, प्यार करने कड़ी हो गई।
0: जी, बेहद ही खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है भगवान दास जी, और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने कॉल ली।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: गांव खोखरा वाली से विनोद बरा का निधन कर रहा हूँ।
0: जी विनोद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है जी। प्रोग्राम आपके सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी। शुक्रिया, आप हमारे नियमित कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं आकाशवाणी के, तो पूर्ण अधिकारीगण और अनाउंसर महोदयों को बधाई और शुभकामनाएं
0: जी। हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत बधाई कि हमारा जो आकाशवाणी है वो 90 वर्ष पूरा कर चुका है।
1: हाँ जी
0: जी, तो बताइए विनोद जी, गर्मी की छुट्टियों को लेकर कि गर्मी की छुट्टियां कल और आज में आप क्या डिफरेंस देखते हैं, या आपकी कोई पुरानी कोई याद हो आपको गर्मी की छुट्टियों से रिलेटेड, तो आप बताइए।
1: अब बचपन की अगर बातें करें तो स्कूल के जमाने में तो छुट्टियां ननाल भी तो हम बिताते थे, और आज जो बात की उम्र बड़ी हो गई है, 52 साल की उम्र है, तो बच्चे जा रहे हैं, छुट्टियां आप ननाल में बिता रहे हैं, तो फिलहाल तो मैं आपको घर पर ही हूँ, बच्चे गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए। और मैं तो ये कहूँ की गर्मी को देखते हुए कुछ ध्यान भी रखना है, गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी 48+ चल रहा है हमारा, तो गर्मियों की छुट्टियां तो मनाइए, कोई बात नहीं, अपने स्वस्थ रहिए और घर पर रहेंगी मनाए तो ठीक है
0: जी। बिल्कुल सही कहा विनोद जी आपने, गर्मी की छुट्टियां बहुत खास हुआ करती थी हमारे लिए, और आज भी हमारे बच्चों के लिए बहुत खास है गर्मी की छुट्टियां।
1: जब हाँ, गर्मी की छुट्टियां आते हैं तो बच्चों की बहुत खुशी होती है कि आज हम वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, घूमने जाएंगे।
0: तो आपके तो खेती बाड़ी का काम है, तो आपके खेतों में भी खूब चहलकदमी छुट्टियों के दिनों में रहती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल होती है, खेतों में काम बहुत होता है इस वक्त भी, क्योंकि नई फसल बोनी होती है,
0: तो उसमें भी आपके बच्चे मदद करते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: और गर्मी की छुट्टियां सबके लिए खास होती हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों, सबके लिए एक ठहराव एक स्थिरता लाती हैं, और कुछ रिलैक्स के पल हमारे लिए लेकर आती हैं गर्मी की छुट्टियां।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ संदेश ये देना चाहूंगा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पशु पक्षियों का ध्यान रखें और समय समय पर उन्हें पानी की व्यवस्था करते रहें, ये हमारे सुनने वालों का संदेश दे रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, गर्मी का मौसम है तो हमें अपने चारों ओर ख्याल रखना है। बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: प्रेम कहानी का कोई भी गीत सुना दो, आज मन आपकी पसंद का।
0: और अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया शुक्रिया, आइए सुनते हैं आप ये गीत।
1: ओके
2: तो

0: हेलो ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: हाँ मैडम जी, स्वागत है। खूब खूब स्वागत है।
0: बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे
1: मैं
0: हैं?
1: लक्ष्मी नारायण सोलंकी, पुष्पा सोलंकी, हेमंत सोलंकी, कोमल सोलंकी, गंगा शहर से।
0: जी जी जी आपने अपने संगी साथियों का नाम भी ले लिया।
1: हाँ,
0: तो आप बताइए लक्ष्मी नारायण जी, क्या हालचाल है? गर्मी की छुट्टियाँ कैसे व्यतीत हो रही है आपकी?
1: गर्मी तो उतार चढ़ाव चल रहा है अभी। गर्मी की छुट्टियाँ ऐसे क्या है कि बच्चे अभी आए हुए थे, खूब खूब आनंद से लिया और पिकनिक में, मॉल में और में सब घुमा के लाए थे।
0: घूमना फिरना हो रहा है बच्चों के साथ?
1: साधुगंज के कॉलोनी में जो मेला लगता है उसमें भी घुमा के लाए थे बच्चों को।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और बीकानेर में एक चौपाटी है, वो भी वहाँ भी घुमाया था
0: जी। तो आपने गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी पुरानी यादें भी ताजा कर रहे होंगे?
1: हाँ, पुरानी यादें तो ताजा ही है। हम भी पहले जाते थे पब्लिक पार्क और यहीं यहाँ से पैदल चले जाते थे गंगा शहर घूमने के लिए। जैसे बरसात होती है ना उसमें, उन दिनों में चले जाते थे। और वहाँ झूले और वो आने वगैरह भी लगे हुए हैं। वहाँ धूप में खेलना और खूब आनंद आता था मैडम जी। बच्चों के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी हो गए वहाँ, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। पहले तो ये शरीर से खेलो, जैसे कबड्डी खो खो खेल लिया, उसमें शरीर की ताकत भी होती थी।
0: गर्मी की छुट्टियों का एक अलग ही आनंद हुआ करता था।
1: आनंद है।
0: पार्क में जाके खेलना और पार्क में सुबह शाम एक रूटीन होता था पूरी छुट्टियाँ।
1: पूरी छुट्टियाँ रूटीन होता था। और पहले बचपन में हम क्या घूमने जाते थे दौरों में, टीले दौरे होते थे।
0: हाँ जी जी जी, वो तो बीकानेर के फेमस है।
1: हाँ, उसमें क्या है कि वो दौरे होते थे कम से कम 10-20 फुट ऊंचे, उसमें हम क्या है कि नीचे वो आते थे
0: जी, ऊपर चढ़ना और फिर वहाँ से स्लाइड करके नीचे आना जी, उसका तो आनंद ही कुछ अलग ही होता था।
1: अलग ही है। मारवाड़ी बोलते हैं, गुड़कना बोलते हैं उसको।
0: गुड़कना, धोरे पे गुड़कने के लिए जाया करते थे। अपने संगी साथियों के साथ जाते थे या घर के परिवार के सदस्यों के साथ जाते थे?
1: जाते थे, छुट्टी के दिन जाते थे। और सुबह सुबह घूमने का आनंद, जैसे पांच निकल जाते थे और धूप निकलती थी जब तक रहते थे, यही एंजॉय था।
0: जी जी जी, बहुत खूब बहुत अच्छा। आपने गर्मी की छुट्टियों का जो एक आपने व्यतीत करी बचपन में, उनको वापस से एक बार ताजा कर लिया। ये यादें ही हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही किस्से कहानियां सुना के उन्हें मोटिवेट करते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ कुछ ना कुछ बाहर निकल कर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, उसका अलग ही आनंद है।
1: अलग एंजॉय, अलग।
0: तो बताइए लक्ष्मी नारायण जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: पुकार फिल्म का है, अमिताभ बच्चन का, तू मायके मत जाइयो।
0: जी, बेहद ही खूबसूरत गीत है। और गर्मी की छुट्टियां हैं तो मायके जाना तो बनता ही है, लेकिन आप मना कर रहे हैं अपनी मिसेज को कि तू मायके मत जाइयो।
1: या तो सुबह जाओ शाम को आ जाओ। ये
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने,
1: सुबह को टाइम से खाना पीना होता ही है, कौन मनाए।
0: और गाना भी वक्त के अकॉर्डिंग ही आपने चुना है, तो अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: थैंक यू थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, आपका प्यार भरा नमस्कार स्वीकार किया हमने, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद
0: जी। अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
1: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में है बहन जी, आपसे बात हो रही है। तो अब तो ऐसे लग रहा है कि गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा।
0: बिल्कुल, अगर आपका आज कॉल लग गया और आपकी और हमारी बातचीत हो रही है तो ये सबसे खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे जो श्रोता हैं वो कई महीनों बाद आज हमसे फिर जुड़े हैं।
1: बिल्कुल बहन जी, वैसे तो गर्मी

0: बहुत पड़ रही है, पर जब रेडियो से जुड़ जाते हैं तो सचमुच गर्मी लगने नहीं लगती हमें
1: जी,
0: लगती।
1: क्योंकि हम अपने श्वास में अब गानों को गुनगुनाने जो लग जाते हैं, है ना, तो
0: सही बात है बहन
1: एक्सरसाइज होती
0: जी।
1: है, गुनगुनाते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो संगीत में, म्यूजिक की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी भी कम लगती है और हम गर्मी को भूल जाते हैं कुछ पलों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं
1: बिल्कुल। तो बताइए जगदीश जी, क्या संदेश देंगे आज आप?
0: बहन जी। ऐसे है कि जब हम छोटे थे पढ़ते थे, 72 तक मैं पढ़ा हूँ, और हमारे जमाने में तो ये होता था कि जब छुट्टियां होती थी, छुट्टी से पहले ही एक दिन, एक महीना पहले हमें ये खुशी होती थी कि एक महीने के बाद छुट्टियां होंगी और उसके बाद हम अपने ननिहाल जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियों का इंतजार बेसब्री से हुआ करता था।
0: तो कभी तो हमारे मामा जी लेने आ जाते थे, कभी हमारे पिताजी छोड़ आते थे, क्योंकि हमें नान के जाने का बड़ा चाव होता था।
1: जी जी बिल्कुल, सभी को रहता है इन दिनों छुट्टियां होती हैं तब घूमने फिरने का और नाना के दादा के घर जाने का मन सभी का करता है कि अब थोड़ा टाइम हमें मिला है, लंबी छुट्टियां हमें मिली हैं तो कहीं हम घूम फिर के आएं। और बहुत स्पेशल हुआ करते थे वो दिन, क्योंकि वहां पर सब मामा मासी के बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे।
0: और वहां से इतना प्यार भी मिलता था, हमें लगता था जैसे हम राजा लोग हैं। तो इतना भरपूर प्यार मिलना और अच्छे अच्छे खाने मिलना, तो घूमना फिरना मामा जी के लड़कों बच्चों के साथ, तो अलग ही मजा था।
1: जी बिल्कुल। और आज के दौर में आप कैसे देखते हैं गर्मी की छुट्टियों को? आज भी आपके बच्चे वही एंजॉय, वही आनंद कर पा रहे हैं?
0: आज के जो युग है बहन जी, अभी मेरे पोते भी हैं, बेटा भी है, तो वो तो उनको तो ये होता है कि पहाड़ों में चले जाएं बस अपनी अपनी गाड़ियां लेके। वहां इतना रश हो जाता है कि घूमने का भी कोई आनंद नहीं मिलता उनको।
1: जी जी जी बिल्कुल सही कहा। इन दिनों काफ़ी भीड़ रहती है हिल स्टेशंस पे विशेष रूप से, और करता है मन, जाने वाले जाते भी हैं और अच्छे से समय अपना स्पेंड करके भी आते हैं।
0: शौक भी बदल गए हैं, पर हमें तो ये लगता है कि हमें जब ननिहाल जाते थे तो कितने पहाड़ों से ज्यादा हमें आनंद मिलता था।
1: जी बताइए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे जगदीश जी?
0: बहन जी आज गीत रफी साहब जी की आवाज में है, फिल्म है सूरज और चंदा,
1: जी
0: उसकी दो
1: फिल्म,
0: लाइनें मैं गुनगुना के बताता हूँ बहन
1: जी
0: जी।
1: जी बिल्कुल।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम, प्रणाम।
0: जी। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में। हेलो
1: हाँ, मैं कोदवा साझा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, राम स्वरूप जी, कैसे हैं आप?
1: तो बढ़िया मैम, आप लोग बीकानेर रेडियो के आरजे बहन लोग, आरजे भैया लोग?
0: सब बढ़िया है यहाँ पे, हमारा पूरा आकाशवाणी परिवार स्वस्थ और मस्त है। बताइए आप क्या करते हैं, आज आपका कॉल पहली बार लगा है।
1: हाँ दीदी, आज पहले बार लगा। मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ, सवारी इकट्ठे करके तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ। अभी 3 तारीख को बद्रीनाथ नेपाल से वापसी आया हूँ। 24 उसको प्रोग्राम से फिर अभी बना रहा हूँ। सितंबर में गया बना, इसके बीच में अभी शिवर बागेश्वर बनाऊंगा और फिर बद्रीनाथ के एक प्रोग्राम और बनाऊंगा दीदी इसमें।
0: हाँ जी, तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो आपका बहुत बिजी शेड्यूल बना हुआ है, घुमाने
1: हाँ
0: फिराने
1: दीदी,
0: का काम है आपका, ट्रेवल का, तो आप अच्छे से आप कर रहे हैं अपना काम।
1: हाँ दीदी,
0: तो गर्मी की छुट्टियां आप कैसे व्यतीत करते थे बचपन में, और आज के
1: गर्मी
0: परिप्रेक्ष्य में गर्मी की छुट्टियों को आप कैसे देखते हैं?
1: बचपन में दीदी हम लोग घर में ज्यादा रहते थे, उतना बाहर नहीं निकलते थे। पहले गर्मी बहुत रहता था दीदी, अब था उतना गर्मी बचपन है जैसे गर्मी, बचपन में जैसे बरसात और ठंड नहीं है, अब तो बहुत कम हो गया है।
0: जी, और पहले जैसे साधन भी नहीं हुआ करते थे, अब तो साधन संपन्न हो चुके हैं हम, ठंडा फ्रिज का पानी है, कूलर एसी हमारे घर में लगे हुए हैं, पहले ये सुविधाएं नहीं हुआ करती थी।
1: हाँ दीदी,
0: तो आप बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आज राजा रंग कहे दीदी, मेरा नाम है चमेली, गाया है लता ताई जी ने और इसकी फिल्म आया गया है कुमके ऊपर, और गीत को लिखा आनंद बख्शी, संगीत को दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को दीदी आप लोगों को पहले साथ सुनेंगे आरजे भैया लोग, आरजे बहन बीकानेर रेडियो के, उसके बाद मेरे परिवार भरत का प्रियस गुप्ता, उसके दौड़ के श्रेयांश गुप्ता, शेषांग गुप्ता और श्रेयांश गुप्ता, और लड़की सेकंड नंबर प्रीति जैन, उसके दो लड़के अनंत जैन, हंसी जैन, और मेरा छोटा लड़का विवेक गुप्ता, पत्नी नाम हीरा देवी। उसके बाद रेडियो बीकानेर के जितने श्रोता भाई बहन उसके साथ इस गीत को सुनेंगे दीदी।
0: जी जी बिल्कुल, बेहद ही खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, और अब आइए हम सब और आपके सभी संगी साथी मिलकर सुनते हैं इस गीत को। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।
2: मेरे

0: हेलो
1: हाँ हेलो, नमस्ते जी।
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: हाँ, मैं महेश गर्ग बात कर रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से। गांव मेरा डेरा है, तहसील चेखाना।
0: जी महेश जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम जी।
0: जोधपुर से आप बात कर रहे हैं, आपका कॉल आज पहली बार लगा है।
1: पहली बार लगा है, पत्र लिखे हैं मैंने, ईमेल वगैरह भेजता हूँ मैं आपका।
0: तो आज आपका
1: हाँ
0: कॉल पहली बार लगा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा फोन लगा है पहली बार। और हाँ
0: जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आज नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, और ऐसे ही हमारे नए श्रोता हमसे जुड़ते रहें, हमसे बातचीत करते रहें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे श्रोता कहाँ कहाँ हमें सुन रहे हैं, और कार्यक्रम को लेके क्या प्रतिक्रिया उनकी रहती है, वो सब हम उनसे रूबरू होके उनसे बात करके जानते हैं। तो अब बताइए महेश जी, आज क्या संदेश देंगे? गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं आप? कैसे आपकी पहले व्यतीत होती थी, और आज के दौर में आप गर्मी की छुट्टियों को कैसे देखते हैं?
1: मैं जब जिस समय स्कूल में पढ़ता था, पांचवी छठी या सातवीं में, तो उस समय मैं छुट्टियां मनाने के लिए अपने ननिहाल जाता था। और छुट्टियों में जो जितने भी वो बालक थे उनकी छुट्टियां थी, तो हम खेलते थे, कूदते थे, और वो एक वातावरण ही अलग था। आजकल वो मोबाइल का एक जमाना आ गया है, उसमें जो बालक है वो दिन भर फोन में है, और मैं वो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे जुड़ा,
0: जी
1: ये वो
0: बिल्कुल,
1: समाप्त हो गए हैं। बाकी जो पुराना जो चीज थी ना, वो वर्तमान में अब नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पहले साधन सुविधाएं नहीं थी इतनी, तो हमारा जो गेम का एरिया होता था वो घर से बाहर ही होता था ज्यादातर, संगी साथियों के साथ ही खेलना कूदना, और सब तरह के जो आउटडोर गेम्स हुआ करते थे उनका हम आनंद लिया करते थे। और आज गैजेट के युग में बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन या टेलीविजन या लैपटॉप के जरिए ही अपना टाइम व्यतीत करते हैं।
1: ये भी है, और एक जैसे हमारे जैसे दादाजी थे, तो वो गर्मियों की जैसे छुट्टियां होती ना, तो वो हमें

0: कई धार्मिक स्थल पर ले जाते हैं और कहीं जैसे जैसे ननियाल हैं, जैसे बुआ जी के हैं, बहन के हैं, वहाँ उनको ले जाते हैं, तो वो समाज में जुड़ाव होता है। लेकिन आज के जो वर्तमान जो पीढ़ी है वो ये चीजें नहीं जानती है।
1: लेकिन हमें भी अपने वर्तमान पीढ़ी को सुधारना होगा और उसके लिए हमें अपने पुरानी जो चीजें हैं उन्हें वापस अपने बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा।
0: वातावरण ऐसा ही यदि बदल देना हम
1: जी हम खुद ही जिम्मेदार हैं इन सब जो भी स्थितियां आज हमारे सामने आ रही हैं उसकी जिम्मेदार भी हम स्वयं ही हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि कुछ समय के लिए हम अपने बच्चों को घर से बाहर लेकर जरूर जाएं ताकि बच्चे गैजेट से अपना ध्यान दूर करें और बाहर आउटडोर गेम्स उन्हें पार्क में उन्हें ले जाएं और एक रूटीन बनाएं, जैसे हमारा रूटीन हुआ करता था सुबह शाम खेलने का, वैसा ही रूटीन अगर हम अपने बच्चों में क्रिएट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी उस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: बिल्कुल बात सही है। और एक शिक्षा के साथ ये भी ये जुड़ा हो जाए ना सामाजिक बंधन तो भी ठीक रहेगा ये।
1: जी बिल्कुल, वो प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा, परिवार के सभी सदस्यों को उसमें सहयोग देना होगा तभी संभव हो पाएगा।
0: बिल्कुल सही है।
1: आप बताइए आज अब गीत कौन सा सुनेंगे?
0: अंदाज पिक्चर का गीत है जिंदगी एक सफर है, सुना किशोर कुमार की आवाज में, आप सुना देंगे तो बहुत ही।
1: जी बेहद ही खूबसूरत गीत है ये और जिंदगी एक सफर है सुहाना, और इस सुहाने सफर को हमें अच्छे से व्यतीत करना भी चाहिए। और फिल्म अंदाज का गीत आपने पसंद किया है तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
2: जिंदगी

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: मैं राधेश्याम कटारिया शेर करूंगा, जिला गंगनौर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी राधेश्याम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम, गर्मी का मजा ले रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो घर में तो रौनक होगी ही आपके।
1: हाँ जी,
0: और कैसे व्यतीत हो रही हैं गर्मी की छुट्टियां?
1: बढ़िया मैडम, गुजर रही हैं गर्मी की छुट्टियां तो।
0: और कैसे व्यतीत किया करते थे आप पहले? कुछ किस्से, कोई याद आपकी जहन में हो तो हमसे साझा कीजिए।
1: मैडम गर्मी की छुट्टियों में वैसे तो बाहर जाना तो मुश्किल ही होता है, फिर भी अपनी सेहत के लिए और तो थोड़ा बहुत जाएं तो बहुत ही बढ़िया है।
0: जी बिल्कुल,
1: मन भी प्रसन्न रहता है और नया अपनी जो है अंदर के जो है वो भी विचार बहुत बदल जाते हैं बाहर जाने से।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपने

0: आसपास के वातावरण में ही, मतलब कि कोई बाग बगीचा अगर हमारे घर के पास में है तो सुबह सवेरे हम सैर के लिए जा सकते हैं।
1: हाँ जी, वो भी है बढ़िया।
0: और घर से बाहर यदि हम घूमने फिरने जा रहे हैं तो वो भी एक अपना अलग ही आनंद है।
1: हाँ जी, मैं उससे तो कह रहा थोड़ा सा अपना शरीर में भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और दूसरों से मिलने से भी बढ़िया हो जाता है एक दूसरे से।
0: बिल्कुल सही कहा, मिलना जुलना तो बेहद जरूरी है और गर्मी की छुट्टियां विशेष रूप से मिलने जुलने के लिए ही बनी है। सब साथ हुआ करता था पहले भी और आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो गर्मी की छुट्टियां मिलजुल कर व्यतीत करते हैं।
1: हाँ जी, ये तो है ही है। और अपने छुट्टियों के अंदर तो अपने परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनको बुलावा भी भेज देते हैं, आप आओ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मजबूर फिल्म का गीत है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल।
0: जी, मजबूर फिल्म का गीत आपने पसंद किया है, तो अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।
2: के रूठे रब को

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: मैं मंसूर अली बोल रहा हूँ, राजस्थान जिला बीकानेर गंगा शहर से।
0: जी मंसूर जी, कैसे हैं आप?
1: हम सब अच्छे, उम्मीद करता हूँ पूरी टीम स्वस्थ होगी और मस्त होगी।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी पूरी आकाशवाणी टीम स्वस्थ और मस्त है और अपने काम में व्यस्त है। बताइए क्या हाल चाल है और क्या संदेश देंगे आज गर्मी की छुट्टियों से लेकर?
1: जी देखिए, संदेश तो ये है मैम, गर्मी से जितना हो सके बचा जाए और खाना पौष्टिक खाया जाए और पानी भरपूर किया जाए। और छुट्टियों का तो ऐसे है मैम, पहले जब हम मतलब छोटे थे तो नानी के घर जाना या अपने रिश्तेदारों के घर जाना, वैसे करके आउटडोर गेम खेलना, मतलब ऐसे काम किया करते थे।
0: बिल्कुल,
1: मतलब समय बदल गया है तो इससे मतलब बच्चे भी घर के अंदर रहकर मतलब आउटडोर कम कर दिया, इंडोर गेम खेलने लगे, मोबाइल वगैरह में व्यस्त रहने लगे और थोड़ा आनंद कम होता हुआ नजर आ रहा है मैम।
0: तो अब उस आनंद को वापस कैसे प्राप्त किया जाए, उसका प्रयास भी तो हमें ही करना होगा। हमारे बच्चों को हमें वापस उसी मोड पे ले जाना होगा जहाँ से हम गुजरे हैं।
1: तो इसलिए हमें भाई बच्चों को तो कम से कम स्क्रीन टाइम कम करें,
0: स्क्रीन टाइम कम करें और उन्हें घूमने फिरने के लिए बाहर लेकर जाएं और उनके साथ भी खेलें, हम खुद खेलें।
1: हम खुद खेलेंगे तो वो सीखेंगे, तो
0: जी जी कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज बाहर जाके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी हमसे जुड़ते चले जाएंगे।
1: जी जी जी।
0: तो अब बताइए मंसूर जी, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत सुना है मुद्दत फिल्म से, मोहम्मद अजीज और आशा भोसले ने, और गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत बप्पी लहरी का है।
0: जी,
1: एक मैं मेरे दोस्त हसाराम के लिए पेश करना चाहता हूँ और मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी आप अपने मित्रों का नाम लीजिए।
1: जी, फरियाद अली और कालू भाई, राजू भाई, गोपाल भाई, पुरुषोत्तम पंचाल, गंगा शहर से।
0: जी, आप और आपके संगीत साथी सुनिए इस गीत को। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: आवाज के हम सफर साथियों को सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार इवाड़ का प्यार भरा नमस्कार मैडम जी।
0: जी स्वागत आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में। राम कुमार जी बताइए कैसे हैं आप।
1: सबसे पहले तो आपको जितने आपकी मीठी आवाज का आनंद ले रहे हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे आकाशवाणी ने 90 साल पूर्ण कर लिए हैं।
0: जी जी बिल्कुल, आपको भी और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष इन श्रोताओं की वजह से ही पूरे करे हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें आकाशवाणी बीकानेर का भी बहुत जबरदस्त रोल रहा है। आकाशवाणी बीकानेर ने श्रोताओं को बहुत प्यार बांटा है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा राम कुमार जी आपने, हमारे आकाशवाणी ने श्रोताओं को प्यार बांटा है तो उसके रिटर्न गिफ्ट भी श्रोताओं ने हमें दिए हैं अपनी प्रतिक्रिया बता के और हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुन के।
1: बिल्कुल, ये तो श्रोताओं का फर्ज बनता है। जब इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम श्रोताओं के लिए आप लोग सजाते हो तो श्रोता दूर दूर से चले आते हैं आपके पास। और खास बात तो ये है कि जब से मोबाइल ऐप का जमाना आया है तो पूरे हिंदुस्तान की कॉलें आपके पास आती है।
0: जी जी जी बिल्कुल, और अच्छी बात है ना कि हमें पूरे हमारे भारतवर्ष में कहां कहां हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं हमें पता चलता है। और ये कार्यक्रम हेलो बीकानेर भी हमारे अपने श्रोताओं का है और उनसे बात करते हैं हम, उनसे जानते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं जब वो हमारे कार्यक्रमों की, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो प्रयास किया वो हमारा सफल रहा।
1: बिल्कुल, और एक बात और भी कहना चाहता हूँ, बीकानेर ने जो श्रोताओं को जो स्थान दिया है अन्य प्रोग्रामों में, जैसे कि श्रोताओं को विशेष तौर पर निमंत्रण देकर वहाँ पर जो वार्तालाप करवाई है, इसके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: जी जी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत राम कुमार जी कि आप हमारे नियमित कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारे जो श्रोता रेडियो सफरनामा कार्यक्रम है हमारा उसके अंतर्गत हम अपने श्रोताओं को बुलाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, रेडियो के बारे में उनकी जो यात्रा रही है अब तक की वो जानते हैं और वो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लगातार।
1: बिल्कुल, ऐसा है कि रेडियो तो मेरी रूह की खुराक है, अगर वो नहीं सुनेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी।
0: जी जी जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी कि आप हमारे रेडियो को इतना पसंद करते हैं और आपने तो बस ऐसे शब्द बोल दिए कि अब हम शब्द लेस हो चुके हैं, हमारे मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं कि अब क्या आपकी तारीफ करें हम।
1: नहीं, तारीफ की आवश्यकता नहीं है, पिछले 50 सालों से रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूं तो आप लोगों से सीखा है सब कुछ।
0: जी जी जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए आज के संदेश देना चाहेंगे।
1: बिल्कुल, संदेश सबसे पहले तो यही देना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है हमारे क्षेत्र के अंदर, तो वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है। जब बारिश का मौसम आए तो एक पेड़ अवश्य लगाएं, उस पेड़ की रक्षा भी करें।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, हम पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन हम उसकी सुरक्षा करना, उसकी जो देखभाल है वो हम भूल जाते हैं, तो वो हम ना करें। हम संकल्प लें तो पूरा संकल्प लें, यानी कि एक पेड़ गोद लेते हैं हम उसे, जैसे एक बच्चे को गोद लेके हम उसका भरण पोषण करते हैं वैसे ही उस पेड़ की जो देखभाल है यदि हम नियमित रूप से रूटीन से अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो छोटा पौधा एक दिन पेड़ जरूर बनता है।
1: विश्वास है कि आकाशवाणी से जो कुछ हमने सीखा है वो जो युवा साथी सुन रहे हैं वो भी आपकी बातों से प्रेरणा लेकर और जो विचार आपने बताए हैं कि एक बच्चों की तरह पाल पोषण करके उसको अपने पेड़ का रूप धारण कर रहे हैं तब तक उसकी रक्षा करें, तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। श्रोता वास्तव में इस पर जागरूकता लाएंगे। हमारे सादुल शहर में एक समय ऐसा था जब गांव था, ये गांव से शहर परिवर्तन हो गया, लेकिन हमारे दादा परदादा ने एक कुछ पेड़ पौधे लगाए थे तो पीपल के पेड़ लगाए थे, वो कम से कम 200 साल पुराने बता रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, और पीपल का पेड़ ऐसा है एकमात्र जो हमें रात को भी ऑक्सीजन देता है और दिन में भी ऑक्सीजन देता है,
1: पशु पक्षी भी उनके छांव में बैठकर आनंद लेते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुल राम कुमार जी अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे।
1: हमराज फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, तुम अगर साथ देने का वादा करो, ये गीत मैं डेडिकेट

0: करना चाहता हूँ मेरी वाइफ चंद्रकला रिवार जी के नाम
1: जी जी,
0: और चंद लाइनें अर्ज करना चाहता हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत है कि कुछ लिखने की और बोलने
1: जी,
0: की।
1: जी,
0: तो
1: जी जी जी इरशाद।
0: उम्र भर भटकता रहा तेरी तलाश में, उम्र भर भटकता रहा तेरे ही तलाश में, तुम मिले भी तो क्या मिले उम्र गुजरने के बाद।
1: जी बहुत खूब, बहुत खूब राम कुमार जी। और अब आप और आपकी वाइफ चंद्रकला जी सुनिए इस बेहद ही खूबसूरत गीत को। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो बीकानेर का सफर बस अब यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आप भी हमारे कार्यक्रम हेलो बीकानेर में अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप अपना फोन कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं बुधवार समय 11 से 12 बजे तक। हमारा फोन नंबर है 01512528041 01512528042। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम में संयोजन था श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। और आज का कार्यक्रम हेलो बीकानेर को संपन्न करने की आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा को दें इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हेलो बीकानेर।
2: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की

0: नए दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए हमारे आज

हमारी सभा में आप सुगम संगीत सुनेंगे दिन में 12:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत, समय रहेगा दिन में 1:05। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे हमारा आत्मविश्वास हमारी ताकत, त्वचा की गर्मियों में देखभाल और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी कि रंगहीनता। सरकार के 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण और साथ ही आप सुनेंगे एक वार्ता महिलाओं में एनीमिया। वार्ताकार होंगी प्रेमवदा सिंह।

दिन में 3 बजे हमारी ये सभा संपन्न होगी। शाम 5 बजे हम अपनी दूसरी सभा के साथ लेकर आएंगे। युवा श्रोताओं के लिए संध्या 5:05 पर कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेयर योग और अनुकूलित योग। लघु जानकारी के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय एलिबिनिज्म जागरूकता दिवस, सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साथ ही आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज टाइम। फिल्म संगीत सुनिएगा संध्या 6:05 पर, जिसमें आप सुनेंगे शीर्षक संगीत। रात्रि 9:15 पर और संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़। फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का ये कार्यक्रम आज आपके लिए प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। सुगम संगीत सुनेगा संध्या 7:45 पर और बीकानेर दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। बीकानेर दर्पण के अंतर्गत आप सुनेंगे बीकानेर के सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन होगा श्री अमित सिंह का।

लोक संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर और कार्यक्रम संस्कृति भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से ही रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत की हमारी आज की कलाकार हैं सीमा अनिल सहगल। तो आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ गजलें।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सीमा अनिल सहगल की गाई कुछ गजलें। आइए सुनते हैं इनकी गाई अगली गजल।

इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सुगम संगीत की हमारी आज की कलाकार थी सीमा अनिल सहगल। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

प्रोग्राम का पहला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है शंकर जयकिशन ने और संगीत भी है शंकर जयकिशन का। तो आइए सुनते हैं फिल्म आरजू का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म दो झूठ का ये गीत। गीत को लिखा है MG हशमत ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: लो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, बड़ी देर है
0: कब आएगा।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म शहनाई का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।
1: न झटको जुल्फ से

राजधानी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है।

0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 215 17वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हैं किरण शर्मा और साक्षी गोस्वामी।

0: स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में, और स्वागत कर रही है आपकी अपनी दो सखियां किरण शर्मा और
1: साक्षी गोस्वामी। तो कीजिए स्वीकार हमारा स्नेह सम्मान और प्रेम से भरा नमस्कार। सखियों, प्रेम केवल एक शब्द नहीं है बल्कि भावनाओं का वो सागर है जिसमें अपनापन, विश्वास और रिश्तों की मिठास लहराती है। प्रेम मिलता है माँ के आंचल की छाँव में, पिता के आशीर्वाद की ठंडी हवाओं में। प्रेम मिलता है भाई की सुरक्षा में और बहन की नोकझोंक की आत्मीयता में।
0: प्रेम मिलता है जीवन साथी के स्नेह में और आप जैसी प्यारी सखियों के नेह में। तभी तो आपके दिल से निकली पुकार हमारे दिल तक पहुंच जाती है और हम खींचे चले आते हैं बार बार आपके पास, आपका प्यार पाने और अपना प्यार बांटने।
1: तो आज फिर हम फिर से उपस्थित हैं इसी स्नेहिल मंच के माध्यम से बहनों, कुछ मीठी सी बातें लेकर, कुछ नए विचार लेकर और ढेर सारी मुस्कानें लेकर। तो बताइए बहनों, कैसी हैं आप? क्या कहा, व्यस्त हैं? बच्चों की छुट्टियां जो चल रही हैं।
0: सच में साक्षी, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, पतिदेव की भी छुट्टी होती है, लेकिन एक सवाल है, क्या कभी परिवार की धुरी और सबकी फिक्र करने वाली नारी की भी छुट्टी होती है?
1: शायद नहीं किरण, हम नारियों की कभी छुट्टी नहीं होती। सुबह की चाय से लेकर रात की थाली तक, सबकी पसंद से लेकर सबकी खुशहाली तक, हम सबका ख्याल रखती हैं लेकिन कभी अपने पर ध्यान नहीं देती।
0: तभी तो साक्षी, कभी कभी हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, अपने मन के सागर में भी खुशियों के दीप जलाने चाहिए। थोड़ी सी छुट्टी खुद को भी दीजिए, थोड़ा सा समय अपने सपनों को भी दीजिए, क्योंकि जो महिला खुद से प्रेम करना जानती है वही दुनिया को सच्चा प्रेम देना जानती है।
1: बिल्कुल बहनों, खुद की मुस्कान को भी महत्व दीजिए, जिंदगी की भाग दौड़ में खुद को मत भूल जाइए। तो आइए खुद से प्रेम कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल को छू लेने वाली चर्चाएं, ज्ञान और प्रेरणा की बातें, साथ में को सदाबहार गीते, सुरीले गीतों की सौगातें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन

0: के माध्यम से
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का पहचान का और विस्तार का
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान
0: आकाशवाणी बीकानेर आपकी आवाज जन जन तक
2: किरण अभी हमने बात की थी ना महिलाओं की छुट्टियों की तो हम पता क्यों नहीं अपने बारे में पहले सोच पाते हैं क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि सबका ध्यान रखो लेकिन इन सब के चलते हम अपनी इच्छाओं अपने सपनों और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आत्मविश्वास को पीछे छोड़ देते हैं
3: सच कहा साक्षी आत्मविश्वास का अर्थ नहीं ये नहीं है कि क्योंकि हमें सब कुछ आना चाहिए इसका मतलब है कि हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम सीख सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं और मुश्किलों का सामना भी कर सकते हैं
2: बिल्कुल किरण और कहा भी गया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती जब एक महिला खुद पर विश्वास करना सीख जाती है तब दुनिया की सबसे बड़ी रुकावटें भी छोटी लगने लग जाती हैं चाहे हम महिलाएं गृहिणी हों या कामकाजी महिला छात्रा हों या फिर व्यवसाय करने वाली हर महिला के जीवन में चुनौतियां तो आती ही हैं बस अलग अलग तरह की होती हैं कभी लोगों की बातें मन को तोड़ देती हैं तो कभी अपनी ही गलतियां हमें पीछे खींच लेती हैं
3: बिल्कुल बहनों ये समझिए कि गलतियां हमारी हार का प्रमाण नहीं बल्कि सीखने का अवसर होती है कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाते हैं कोई हमसे ज्यादा सफल दिखता है कोई सुंदर दिखता है तो कोई ज्यादा सक्षम लेकिन हर किसी की अपनी यात्रा होती है ना साक्षी
2: बिल्कुल सही कह रही हो किरण और फूलों की खूबसूरती इस बात में नहीं है बहनों कि वे एक जैसे हैं बल्कि इस बात में है कि हर फूल अपनी अलग पहचान रखता है महिलाओं का आत्मविश्वास उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बनता है एक आत्मविश्वासी माँ अपने बच्चों को निडर बनाना सिखाती है
3: एक आत्मविश्वासी बेटी समाज की सोच बदलने की ताकत रखती है और एक आत्मविश्वासी पत्नी परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है बहनों हमें अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए चाहे वो कोई नई चीज सीखना हो या अपनी बात खुलकर रखना हो
2: या फिर किरण कठिन परिस्थितियों में धैर्य से सामना करना ये सभी आत्मविश्वास की ही सीढ़ियां हैं बहनों दूसरों की स्वीकृति से नहीं अपनी नजरों में खुद का सम्मान बढ़ने से आत्मविश्वास जन्म लेता है
3: तो आइए बहनों खुद से वादा करें हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास भी करेंगे और किसी भी परिस्थिति में खुद को कम नहीं आंकेंगे
2: बिल्कुल सही कह रही हो किरण ये वादा तो हम सभी को खुद से करना ही चाहिए क्योंकि एक महिला का आत्मविश्वास केवल उसकी ताकत नहीं होता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बनता है बहनों अपने भीतर की आवाज को पहचानिए अपने सपनों को उड़ान दीजिए दुनिया क्या कहेगी ये छोड़ दीजिए क्योंकि आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है
3: सही बात कही साक्षी जब आत्मविश्वास हमारे भीतर जागता है तो मन में वही एहसास होता है कि हमारी उड़ान में ये आसमान भी छोटा लगने लग जाता है और हमारे कदम जमी पर नहीं पड़ते बल्कि सपनों के आसमान को छूते हैं कुछ इस गीत की तरह

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: साक्षी, रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है ना। तभी तो कहते हैं ना कि रंगों से सजती है दुनिया सारी, हर रंग की है अपनी छटा न्यारी।
1: बिल्कुल, खुशियों के रंग जीवन में भर जाएं तो प्रेम और उमंग के दीप जलाएं।
0: हाँ साक्षी, देखो ना हमारे शरीर को भी ईश्वर ने कितने रंगों से सजाया है। बालों के रंग को काला भूरा बनाया तो आंखों की पुतलियों के कई रंगों से भर दिया, किसी की काली तो किसी की भूरी, किसी की नीली, है ना।
1: बिल्कुल, और हमारी त्वचा का रंग भी तो काला गोरा और गेहुआ है ना, वही नाखून तलवे हड्डी खून इन सभी को अलग अलग रंग से सजाया है।
0: हाँ साक्षी, पर साक्षी एक ऐसा रोग भी होता है जिसमें त्वचा बालों और आंखों का रंग हल्का हो जाता है, जैसे बाल सफेद या सुनहले हो जाते हैं और त्वचा भी वैसी ही हो जाती है।
1: बिल्कुल किरण, तुम जरूर एल्बिनिज्म की बात कर रही हो ना, जिसकी जागरूकता हेतु आज का दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग ये समझ सकें कि ये रोग संक्रामक नहीं है बल्कि अनुवांशिक है।
0: हाँ साक्षी, एल्बिनिज्म में शरीर में मेलानिन नामक रंग द्रव्य कम हो जाता है या बनता ही नहीं है, जिस कारण त्वचा का रंग हल्का हो जाता है,
1: और इससे जो तेज रोशनी में आंखों में दिक्कत होने लग जाती है या धुंधला दिखाई देने लग जाता है, और धूप में त्वचा का नुकसान या फिर कैंसर का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। पर हाँ बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके का भ्रम पालने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारी संक्रामक नहीं है और ना ही छूने से होने वाली है।
0: साक्षी, तुम्हारी इस बात ने मेरी धुंधली याद को ताजा कर दिया। बचपन की छुट्टियों में बिताए ननिहाल के दिनों की
1: अच्छा।
0: उन पलों को ताजा कर दिया जब मेरा मिलना पड़ोस की सहेली कमला से हुआ, जो एल्बिनिज्म से ग्रसित थी। उस वक्त इस बीमारी का नाम तो नहीं पता था, पर हाँ ये पता था कि धूप में उसको देखने में दिक्कत होती है।
1: अच्छा।
0: शाम होते ही वो एकदम अच्छे से देख सकती है, पर धूप सहन नहीं कर सकती है। जब ये बात सुनते तो बड़ा आश्चर्य होता, सोचते भला ये कौन से देश से आई है इस रेगिस्तान में, और क्योंकि उसका रंग और बालों का रंग, भौहों का रंग सब कुछ गोल्डन भूरा था, लगती पूरी बार्बी डोल या अंग्रेजन थी। वो मेरी दोस्त थी, पर दूसरे बच्चे उससे दूर रहते थे कि पता नहीं कहीं हमें भी ये बीमारी ना हो जाए।
1: लोगों को बहुत भ्रम होता है, इसीलिए तो हमने आपको ये बताया कि ये बीमारी संक्रामक नहीं है और ना ही छूने से फैलती है। इसलिए ऐसा कोई भी बच्चा या व्यक्ति घर परिवार का या पड़ोस में हो तो उसको अपना पूरा साथ दीजिए, उसके आत्मविश्वास को बनाए रखने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि हमारा साथ सिर्फ उसका विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ा देता है ना।
0: बिल्कुल साक्षी, और जब ना उस कमला की बात करूँ ना, तो काफी सालों के बाद जब मैं वापस ननियाल गई तो उनके पिताजी से मेरा मिलना हुआ, तो मैंने उसके हाल चाल पूछे तो सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो मतलब उसको पति भी अच्छा मिला है और घर परिवार भी अच्छा मिला है, और उसके दो बच्चे भी हैं जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं। तो मुझे सुनकर बहुत बढ़िया लगा, और जो कमला का चेहरा है ना, वो आज ये बीमारी सुनते ही मेरे
1: जहन में आ गया बिल्कुल,
0: कि वो बहुत प्यारी दिखती थी और जैसी थी ना वैसा ही उसका मतलब जो आगे की जिंदगी है उसकी।
1: यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके पति ने उसके जीवन में सपनों के रंग भर दिए कुछ ऐसे।

उसकी कोई दूसरी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। लेकिन खून के रिश्तों को अपने खून से सींचती महिलाओं में ही अगर खून की कमी होने लगे तो ये बेहद दुखद स्थिति है, और अफसोस ये है कि ये आज हमारी हकीकत भी है। ऐसा देखने में आ ही जाता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता नहीं रहती है, जबकि सच तो ये है कि महिलाओं की सेहत से पूरे समाज की सेहत जुड़ी है। महिलाएं घर में तो हर सदस्य का ख्याल रख लेती हैं, लेकिन वो खुद की सेहत पर ध्यान देना भूल जाती हैं, या यूं कह लीजिए उनको वक्त नहीं मिल पाता। ऐसे में बहुत सी महिलाएं एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं। शरीर में खून की कमी के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया तब होता है जब खून में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी या असामान्य होने पर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 4 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 53% और 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में 54% है। महिलाओं में खून की कमी का कारण हर महीने माहवारी के समय बहुत ज़्यादा खून का स्राव भी होता है। अब बात आती है कि ये महिलाओं के लिए प्रमुख चिंता क्यों है। तो बहनों, मासिक धर्म में महिलाओं का ब्लड हर महीने उनकी माहवारी के दौरान कम हो जाता है। नया खून बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है जो ब्लड की कमी को पूरा कर सके। जिन महिलाओं के माहवारी लंबी होती है, अधिक दिन तक चलती है और जिनको भारी स्राव का सामना करना पड़ता है, उनको अनीमिया का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा अक्सर महिलाएं खाने पीने में भी लापरवाही बरतती हैं, या यूं कह सकते हैं कि घर की जिम्मेदारियों के बीच में, अपने सारे कामों के बीच में अपना ही खान पान उनके लिए प्राथमिकता नहीं रह पाती। ऐसे में जो बचा खुचा है या तो वो खा लेती हैं, या पूरा परिवार खाना खा लेता है, उसके बाद उनके लिए जो बचता है वो उससे काम चला लेती हैं, या फिर ये होता है कि वो किसी तरह से पेट भर लेती हैं। हम अपने आसपास कितनी महिलाओं को जानते हैं जो चलते फिरते कुछ खा लेती हैं और उन्हें लगता है कि उनका पेट भर गया तो उन्हें पूरा पोषण मिल गया। लेकिन पेट भरना और पोषण प्राप्त करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। गर्भवती महिलाएं अनीमिया से ज़्यादा पीड़ित होती हैं। गर्भावस्था में महिलाओं को अधिक पोषण की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने साथ साथ एक और जिंदगी का पालन पोषण कर रही हैं, और ऐसे में अगर उन्हें पोषण पूरा न मिले, खास तौर से बुनियादी पोषण अगर ना मिले, तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। लेकिन अनीमिया के निवारण से पहले ये जानते हैं कि अनीमिया के कारण कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह से होता है। बहनों, यूं तो अनीमिया बहुत तरह का होता है, ये जेनेटिक भी होता है, ये और भी कई तरह से होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं उस अनीमिया की जो लोहे की कमी से पैदा होता है, जिसे आहार में और थोड़े बहुत सप्लीमेंट की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो बहनों, अनीमिया का कारण जो है वो ये है कि अनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शारीरिक रक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता यानी कि जितनी ऑक्सीजन वो ला ले जा सकती हैं वो अपर्याप्त होती है। ये क्षमता जो है वो आयु से, लिंग से, ऊंचाइयों से यानी कि आप कितनी ऊंचाई पर रहते हैं, या फिर धूम्रपान से और गर्भावस्था की स्थितियों से परिवर्तित होती रहती है। डॉक्टर भी कई बार सलाह देते हैं जब आप में खून की कमी होती है कि आपको पहाड़ों पर जाकर रहना चाहिए। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर दाब अधिक होता है और अधिक दाब वाली जगहों पर आपकी लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। लौह की कमी अनीमिया का सबसे सामान्य लक्षण है। इसके साथ ही फॉलेट, विटामिन B12 और विटामिन A की कमी, दीर्घकालिक सूजन, जलन, परजीवी संक्रमण और आनुवंशिक विकार भी अनीमिया के कारण हो सकते हैं। अब जाहिर है कि आनुवंशिक विकार में तो आप खाना पीना सुधार कर उसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनके बारे में जागरूक रहकर बहुत से अनीमिया के प्रकार इस तरह के हैं जिनसे बचा जा सकता है, और आनुवंशिक विकारों के बारे में भी डॉक्टर से बात करके जानकारी ली जा सकती है। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सुस्ती जैसी समस्याएं होती हैं। गर्भवती महिलाएं और बच्चे इससे खास तौर से प्रभावित होते हैं। अब जानते हैं कि एनीमिया अगर होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लगातार एनीमिया के लक्षणों का सामना करते हुए भी जान नहीं पाते कि हमें एनीमिया है। उन्हें लगता है कि बस सरदर्द ही तो हो रहा है, चक्कर ही तो आ रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा लेट गए, कुछ देर बैठ गए, फिर वापस अपने काम पर लग गए। वो समझ नहीं पाते कि उनके शरीर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ की कमी हो रही है और उस कमी को वक्त पर पहचान करके पूरा करना बेहद ज़रूरी है। तो एनीमिया के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण जो है वो है त्वचा का सफ़ेद दिखना।

0: बहनों, आजकल हर दूसरी महिला को खून की कमी हो रही है। अगर डॉक्टर की भाषा में बोलें तो अधिकतर महिलाएं एनीमिक हो रही हैं। क्या है एनीमिया और महिलाओं में क्यों हो रहा है ये ज्यादा जानेंगे इस वार्ता के जरिए, जिसका विषय है महिलाओं में एनीमिया और वार्ताकार हैं प्रियंवदा सिंह।
1: खून पानी से गाढ़ा होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आपने कभी सोचा? इसका मतलब है कि खून के रिश्ते बाकी रिश्तों से बड़े होते हैं। अब ये अपने आप में बहस का विषय है कि ऐसा वाकई में होता है या नहीं, लेकिन जहां बात रिश्तों की आती है तो महिलाएं जिस तरह खून के और बाकी रिश्ते सहेजती हैं, संभालती हैं,

त्वचा सफेद दिखने लगती है, यूं लगता है मानो आपका रंग उड़ गया हो। दूसरा है जीभ, नाखूनों और पलकों के अंदर सफेदी, कमजोरी और बहुत अधिक थकावट, चक्कर आना। खास तौर से हम बहुत देर लेटकर जब उठते हैं या बैठकर जब उठते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया या आंखों के आगे तारे नाचने लगे, और उन्हें हैरत इस बात पर होती है कि हम तो लेटे हुए थे, हम तो बैठे हुए थे, फिर ये कैसे हो गया। ये तो तब होता है जब कोई इंसान बहुत काम कर रहा हो, लेकिन हम तो अभी लेट के उठे। तो बहनों, ये एक लक्षण है, इसे अनदेखा बिल्कुल ना करें। इसके अलावा बेहोश हो जाना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे और पैरों पर सूजन दिखाई देना, ये सभी लक्षण जो हैं वो अगर आप महसूस करते हैं या कोई आपको बताता है तो उन्हें इग्नोर बिल्कुल ना करें। तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और आप जो आहार ले रहे हैं उसमें देखिए कि उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। अब बात करते हैं एनीमिया के उपचार की। एनीमिया के कई प्रकार हैं, जैसे आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, विटामिन की कमी से होने वाला एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। लेकिन उन सब में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे आम प्रकार का है। एनीमिया के कुछ प्रकार ऐसे हैं जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती, लेकिन उचित डाइट की मदद से महिलाएं निश्चित रूप से इसे रोक सकती हैं या आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की संभावना को कम कर सकती हैं। उचित डाइट के साथ में ये कुछ नुस्खे हैं वो भी आजमाए जा सकते हैं। जैसे 1 कप अनार का रस लें, इसमें 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 चम्मच शहद मिला दें। रोजाना इस मिश्रण को नाश्ते के साथ मिलें। इसके अलावा पालक खून की कमी के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। इसमें आयरन के साथ में विटामिन B12, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व हैं। पालक का 1/2 कप लगभग 35% आयरन और 33% फॉलिक एसिड देता है। पालक का आप सूप बनाकर भी पी सकते हैं। चुकंदर, गाजर और शकरकंद को जूसर में मिक्स करके जूस निकाल लें और रोजाना 1 बार पिए। चुकंदर और सेब के जूस में शहद मिलाकर के भी पी सकते हैं, और अच्छे नतीजे पाने के लिए दिन में 2 बार भी पी सकते हैं। अपने खाने में पालक, बीन्स, चुकंदर, गाजर, नींबू, मटर, हरा चना, पनीर, राजमा और शिमला मिर्च को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मछली, चिकन, अंडा और मटन के सेवन से भी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। सुबह उठकर अनाज जैसे मूंग, चना, मोठ और गेहूं वगैरह में नींबू का रस मिलाकर खाने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा 10 ग्राम ड्राई रोस्टेड बादाम में 0.5 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके अलावा बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होता है, और ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और 10 ग्राम ड्राई रोस्टेड बादाम में कैलोरीज मात्र 163 होती हैं। तो अगर आप उतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो ये बादाम आपके ब्रेकफास्ट का, आपके नाश्ते का एक रोज़ का हिस्सा बन सकते हैं। इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहले तो अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें। आप खा अच्छा रहे हैं, लेकिन अगर उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है तो फिर उस अच्छे खाने का कोई फायदा नहीं है। मसालेदार भोजन के सेवन से बचें। दाल के सूप, सब्जी का सूप, इसके साथ में हल्का भोजन लें। एनीमिया रोगी का भोजन लोहे के बर्तनों में पकाएं। ये शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन के साथ में चाय और कॉफी ना लें। हमारे यहाँ ये मान्यता आम है कि खाने के साथ में या तुरंत बाद चाय लेने से बहुत अच्छे से पाचन हो जाता है, लेकिन ये मान्यता सच्चाई से कोसों दूर है। चाय या कॉफी जो होती हैं वो पोषक तत्वों के अवशोषण को निषेध करती हैं, उसे रोकती हैं। तो खाना खाने के बाद चाय या कॉफी लेने में एक अच्छा खासा अंतराल होना चाहिए। ठंडे पानी से नहाने पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे भी आपकी सेहत में सुधार होता है। एनीमिया से लड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने निजी स्तर पर प्रयास करें, हमें सरकार का साथ भी प्राप्त है। कुछ योजनाएं हैं जिनके जरिए एनीमिया के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। उनमें से एक है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, PMSMA। ये एनीमिया की जाँच और उपचार के लिए विशेष चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर माह की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है। तो आप यहाँ जाकर के एनीमिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसके इलाज के बारे में जान सकते हैं और खुद को और अपने घर वालों को इस बीमारी से या इसके लक्षणों से बचा सकते हैं। इसके अलावा रक्त कोष का संचालन यानी कि ब्लड बैंक का संचालन, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया के गंभीर मामलों से निपटने के लिए रक्त कोष भंडारण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। पोषण अभियान के तहत भी एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान तो बहनों हर चीज पर दिया जा रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि हम सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सेहत का उतना ही ख्याल रखें जितना कि हम दूसरों की सेहत का रखते हैं। हमारे स्वस्थ रहने से सब स्वस्थ रहेंगे। और इसमें यह बात सबसे ज्यादा ध्यान देने की है कि हम कभी भी अपनी

0: क्षमता से ज्यादा मेहनत न करें। महिलाएं अपने हर रिश्ते को कर्तव्य की तरह देखती हैं, इसीलिए उनके लिए हर रिश्ता अपने आप से बढ़कर होता है। लेकिन बहनों, ये बात पूछने की है कि अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो रिश्तों का कैसे रख पाएंगी? रिश्ते हमेशा दो तरफा होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही सबका ख्याल रख रही हैं और आपका ख्याल कोई नहीं रख रहा है। इसीलिए काम को हमेशा बांट कर रखें, सबको अपने अपने काम करने दें और आप भी अपनी क्षमता के हिसाब से अपना काम करें। ये न सोचें कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबके काम करें। अपनी सेहत को देखते हुए अपना ख्याल रखें और अपनी ज़रूरतें तय करें और उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाएं। याद रखिए कि आपकी सेहत के साथ आपका रिश्ता दुनिया का पहला रिश्ता है। अगर ये रिश्ता सही नहीं है तो फिर और कोई रिश्ता सही नहीं रह सकता।
1: बहनों, अभी हमने सुनी वार्ता महिलाओं में एनीमिया। वार्ताकार थी प्रेमवदा सिंह। बहनों, जैसे सरकार एनीमिया से बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वैसे ही भारतीय सेना भी हमारी सुरक्षा के लिए निरंतर डट के खड़ी हुई है सीमाओं पर। तो आइए भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुनते हैं कैलाश खेर जी की आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारम्बार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: साक्षी, हमारे कार्यक्रम में अक्सर महिला सशक्तिकरण की बात होती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं की भी, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि भारत की हर महिला सशक्त और आत्मनिर्भर बनते हुए जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सके, है ना?
1: बिल्कुल किरण, तभी तो आज के हमारे इस कार्यक्रम का एक विषय ये भी है कि सरकार ने इन 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण हेतु कौन कौन से कार्य किए हैं।
0: तो चलो करते हैं साझा वो सारे कार्य जो सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं को केवल लाभार्थी की स्थिति से निकालकर देश के विकास का नेतृत्वकर्ता बनाना रहा है।
1: बिल्कुल किरण, तभी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान चल रहा है। और अगर हम आर्थिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात करें तो उसके तहत मुद्रा योजना में महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी ऋण प्रदान किया जाता है।
0: और हाँ, वही लखपति दीदी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सालाना कम से कम 1,00,000 की स्थायी आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता भी दी जा रही है। और नमो ड्रोन दीदी योजना में ग्रामीण महिलाओं को कृषि कार्यों में तकनीकी रूप से उन्नत बनाने और ड्रोन पायलट के रूप में सशक्त करने की पहल भी चल रही है।
1: इसके साथ ही बहनों, अगर बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समायोजन की, तो उसके तहत जनधन योजना में देश में खुले कुल जनधन खातों में से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के नाम है, जिन्हें उन्हें सीधे सरकारी योजनाओं के लाभ और वित्तीय सुरक्षा जिनसे उन्हें मिल जाती है। और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना भी बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए एक विशेष छोटी बचत योजना कहलाती है।
0: बिल्कुल, और स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जहां बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिलवाने हेतु महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही मातृ वंदन योजना, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको पोषण और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।
1: और इसके साथ ही बहनों, शिक्षा और लैंगिक समानता के तहत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में लिंगानुपात में सुधार आया है और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और महिलाओं के कानूनी अधिकार और सुरक्षा के क्षेत्र में 3 तलाक का उन्मूलन, मातृत्व अवकाश और समान संपत्ति अधिकार संबंधी कानून भी बने हैं।
1: तो इन सभी योजनाओं की अगर हम तरफ देखते हैं तो बस हमें यही लगता है कि अगर सरकार साथ है तो फिर हमें क्या कमी है।
0: बिल्कुल।

0: बिल्कुल सखियों, आपका और हमारा साथ भी यूं ही बना रहे। लेकिन हाँ, गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप अपना विशेष ख्याल रखें, पानी खूब पिए, सूती कपड़े पहने और बाहर निकलते समय चेहरा ढककर निकले और समय समय पर लिक्विड पेय लेते रहें।
1: और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना घर पर रहकर हमारा कार्यक्रम सुने, क्योंकि हम हर रोज आपसे ढेर सारी बातें करने आएंगे। लेकिन आज के लिए दीजिए आज्ञा अपनी दोनों सखियों साक्षी गोस्वामी और
0: किरण शर्मा को।
1: नमस्कार।

0: दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को

0: तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
1: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन

ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजे सुनिए फिल्म संगीत।

का पहला गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आर डी बर्मन का।

0: फल्स
1: आरटी परमन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, गीत को गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म थी द ट्रेन। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म दुनिया का ये गीत। गीत को लिखा है हर्षा जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म संगम का ये गीत। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुनिए फिल्म कॉलेज गर्ल का ये गीत। गीत को लिखा है शिव कुमार सरोज ने और

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म रूप तेरा मस्ताना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मरु चैनल है। मिजन वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर दिन के 3 बजे है। हमारी ये सभा अब यही संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के प्रसारणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर। संध्या के 5 बजने वाले हैं। आपसे कुछ देर में हमारी दूसरी सभा इसी के साथ आरंभ हो रही है। सबसे पहले सुनिए
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी ने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि वीरवायु खेमाराम कुमावत और अग्नि वीरवायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान

0: दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने छठे ओवर में एक विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 5:05 होते हैं। उमंगों का आकाश और हौसलों की उड़ान के साथ लेकर के आए हैं दोस्ती का पैगाम। सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। आज की सभा में हम बात करेंगे कई सारी चर्चाओं की। आज हमारे साथ में स्टूडियो में उपस्थित हैं ओजस्वी भटनागर और मुमल राज पुरोहित। आइए विचारों के जीवन प्रवाह से जुड़ते हैं और आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे सभी युवा साथियों का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है युववाणी। आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्त ओजस्वी
1: और मैं मूमल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और गर्मियों का पूरा आनंद ले रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे।
0: मूमल, मुझे तो लगता है कि हम अपनी सेहत, अपनी फिटनेस, इनका तो पूरा ध्यान देते हैं, पर हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनकी फिटनेस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते।
1: हाँ ओजस्वी, अपनी बिजी शेड्यूल में हम बस इतना ही देख पाते हैं कि वे लोग टाइम पर खाना खा रहे हैं या नहीं, उन्होंने अपनी दवाई ली है या नहीं, पर उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी उतनी ही जरूरी है, जिसके लिए योग से बेहतर विकल्प ही नहीं।
0: बिल्कुल, योग तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए अच्छा है, पर क्या करें, अगर हम हमारे बड़ों से योग करने के लिए कहते भी हैं तो सामने से जवाब आता है अब हम में इतनी ताकत कहाँ, और बस बात टल जाती है।
1: ये तो है, इसलिए तो आज हम इसका बेहद सरल सा उपाय लेकर आए हैं दोस्तों, क्यों ना हम अपने योग को उनके हिसाब से थोड़ा सा चेंज और मॉडिफाई कर दें, जिससे उनके उन्हें ज्यादा तकलीफ भी ना हो और उनकी एक्सरसाइज भी होती रहे।
0: दोस्तों, मूमल बात कर रही हैं चेयर योग और अनुकूलित योग के बारे में, यानी योग करने के वे तरीके जिनमें हमारे बड़े बुजुर्गों को आसानी भी रहे और वे अपने हिसाब से योगासन कर सकें।
1: ओजस्वी, जब हम बात करते हैं चेयर योग के बारे में तो हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कुर्सी पर बैठकर योग करना है, तो जवाब है बिल्कुल हाँ। इन आसान योगासनों को कुर्सी पर बैठकर या उनका सहारा लेकर किया जाता है, जिसमें शरीर में लचीलापन भी आता है और संतुलन भी बनाए रखता है।
0: जैसे कि दोस्तों सिटेड कैट का स्ट्रेच, जिसमें बस कुर्सी पर सीधे बैठना होता है, हाथों को घुटनों पर रखना होता है और अब सांस भरते हुए सीने को बाहर की ओर फुलाना है और सांस छोड़ते वक्त पीठ को हल्का गोल कर लेना है, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी।
1: और सिटेड लेग एक्सटेंशन, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज और आसान भी है ओजस्वी। इसमें बस कुर्सी पर बैठकर पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है और वापस नीचे लेकर आना है, यानी बैलेंस। अगर बैलेंस बिगड़ जाने की और गिरने की इसमें कोई टेंशन भी नहीं, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे होते हैं।
0: बिल्कुल, इसके अलावा नेक स्ट्रेचिंग और शोल्डर रोल्स भी तो बेहद आसान है मूमल, और बुजुर्गों की थकान दूर करनी हो या फिर अकड़न से राहत में चाहिए हो तब भी ये फायदेमंद है। मूमल, हम उनसे हल्का फुल्का प्राणायाम करने को भी तो कह सकते हैं।
1: कह सकते हैं ओजस्वी, चेयर योग में तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम को भी जोड़ा जा सकता है, जो उनके मन को शांत भी रखता है और खुश भी।
0: अब अगर बात करें दोस्तों अनुकूलित योग की, तो ये योग का वो रूप है जिसे हम वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक क्षमताओं और उनकी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं,
1: और इसमें हम हमारे घर पर ही मौजूद मामूली चीजों की मदद से योग करने में हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर कोई सहारे के बिना संतुलन नहीं बना पा रहा है तो वह दीवार का सहारा लेकर वृक्षासन कर सकते हैं, हल्की फुल्की

0: स्ट्रेचिंग भी की जा सकती है।
1: यहाँ तक कि दोस्तों आराम से पीठ के बल लेटकर भी पैरों की एक्सरसाइज की जा सकती है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अगर आपके माता पिता या दादा दादी जल्दी थक जाते हैं तो पीठ के नीचे तकिया लगाकर लेटना उनके लिए फायदेमंद होता है।
0: कुल मिलाकर दोस्तों इन सभी योग का सही उद्देश्य क्या है कि उम्र की सीमा के बावजूद भी लोग योग को अपना सकते हैं, इस तरह से उन्हें कोई भी तकलीफ, चोट या बीमारी ना हो। क्योंकि थोड़ा योग करना सिर्फ हमारे तन को नहीं बल्कि हमारे मन को भी मजबूत करता है।
1: एकदम सही बात है। फिर तो मुमल मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा साथी आज से ही खुद भी योग करेंगे और अपने साथ साथ अपने घर के बड़ों को भी मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को शुक्रिया कहने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता।

0: तो दोस्तों अब वक्त है आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट क्विज टाइम का, जिसमें हम आपसे दो सवाल पूछेंगे जिनके सही जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे।
1: आज का पहला सवाल है, फीफा वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगी, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे हैं?
0: और आज का हमारा दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सवाल फिर सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आप इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढिए, तब तक हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, स्वास्थ्य संतुलन की बात तो हो गई, पर जब हम समाज के बारे में बात करते हैं तो संतुलन शरीर का ही नहीं सोच का भी होना बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कहा मुमल। हम लोग कई बार समाज में सामान्य होने की परिभाषा को इतने छोटे से दायरे में बांध देते हैं कि अगर कोई भी उस परिभाषा से जरा भी अलग हो तो फिर उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एल्बिनिज्म से प्रभावित लोग।
2: दोस्तों, आज यानी 13 जून को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, पर आखिर इस दिन को मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
3: वो इसलिए मोमल क्योंकि इससे प्रभावित लोगों को अक्सर समाज में दुनिया में भेदभाव झेलना पड़ता है। उन्हें हर दिन मिथकों और अंधविश्वासों से लड़ना पड़ता है। इसी वजह से लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एल्बिनिज्म होता क्या है।
2: दोस्तों, एल्बिनिज्म एक ऐसा रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें इंसान के शरीर में मेटानिन नाम के पिगमेंट्स का निर्माण या तो होता है या होता ही नहीं, और बहुत कम मात्रा में होता है। आप में से कई साथी जानते होंगे कि हमारे शरीर की त्वचा, बाल और आंखों का प्राकृतिक रंग मेटानिन देता है, और इस कंडीशन में उस इंसान की त्वचा का रंग ज़्यादा सफ़ेद या हल्का गुलाबी हो जाता है।
3: साथ ही दोस्तों, बालों का रंग भी बिल्कुल सफ़ेद, सुनहरा या हल्का भूरा हो जाता है। आंखें भी हल्की नीली या कुछ अलग रंग की हो जाती हैं। आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होने के साथ साथ फोटोफोबिया यानी धूप से परेशानी होने जैसी दिक्कतें भी इस कंडीशन में आम हैं।
2: अब क्योंकि ये लोग दिखने में थोड़े से अलग दिखते हैं तो बाकी लोगों के मन में ये गलत फहमी आ जाती है कि कहीं ये ऐसी तो बीमारी नहीं जिसे छूने से फैल जाए, और कई बार तो ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार तक दिया जाता है।
3: यहाँ तक कि मुमल उन्हें हिंसा और गंभीर भेदभाव तक का सामना करना पड़ता है। जबकि ये एल्बिनिज्म कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं, ये तो जेनेटिक कंडीशन है। मतलब ये कंडीशन माता पिता से बच्चों में आने वाले जीन्स की वजह से होती है। इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत देखभाल और लोगों के सपोर्ट से एल्बिनिज्म प्रभावित लोग भी सामान्य जीवन जी सकते हैं।
2: मतलब हमें इस कंडीशन से जुड़ी गलत धारणाओं से बचना है और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना है।
3: बिल्कुल।
2: और इस बार वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की थीम भी तो यही है, प्राउडली इन माय स्किन एंड सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स।
3: एकदम सही कहा। हर रंग खूबसूरत है और हमें कोशिश करनी है कि हमारी वजह से किसी को भी सिर्फ इसलिए भेदभाव ना महसूस हो क्योंकि उसका रंग अलग है।
2: एकदम सही कहा ओजस्वी तुमने। जब हम सारे अंतर भूलकर एक दूसरे के साथ देते हैं तभी तो हमारी दुनिया खूबसूरत बनती है, और उतनी ही जितना खूबसूरत ये अगला गाना है।

0: दोस्तों, आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक फोन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खिड़की है, और इस खिड़की का नाम है सोशल मीडिया। लेकिन अक्सर लोग इसकी कमियों पे बातें करते हैं, जिनसे आज हम इस सोशल मीडिया की जो डिजिटल दुनिया है, हम इनसे क्या फायदा उठा सकते हैं या हमारे लिए ये कैसे सकारात्मक उपयोग साबित हो सकता है, क्या ओजस्वी आप बताओगे?
1: मोबाइल सोशल मीडिया तो एक दुधारी तलवार की तरह है। अब हम पे निर्भर करता है कि हम इससे समय बर्बाद करते हैं या फिर अपना भविष्य संवारते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा ओजस्वी। लेकिन हम जब बात करते हैं सकारात्मक उपयोग का, यानी कि पॉजिटिव यूज का, तो युवाओं के लिए इसका मतलब क्या है और वह इसका किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं?
1: मुमल, सबसे बड़ा फायदा तो है शिक्षा और ज्ञान में। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है बल्कि बेहतरीन टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और मेंटर्स भी मौजूद हैं। आप घर बैठे कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, विदेशी भाषाएं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक मुफ्त में कर सकते हैं। सोशल मीडिया इस दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी बन चुका है।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही तुमने, यानी अगर नियत सीखने की हो तो सोशल मीडिया एक वरदान है।
1: बिल्कुल
0: ओजस्वी, इसके अलावा रोजगार और करियर के मामले में ये कैसे मददगार साबित हो सकता है?
1: देखो मोमल, आज के दौर में सोशल मीडिया एक बेहतरीन रोजगार मंच है। अगर आप में कोई हुनर है जैसे कि पेंटिंग, कुकिंग या राइटिंग, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। या जिसे हम वोकल फॉर लोकल भी कहते थे, उसे तो आज सोशल मीडिया ने ग्लोबल बना दिया है। इसके अलावा कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके जरिए युवा सीधे बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स तक से जुड़ सकते हैं और इंटर्नशिप और नौकरियां ले सकते हैं।
0: यानी छोटे शहरों के हुनरमंद युवा अब बड़े शहरों में भटकने की उनको जरूरत नहीं, उनका टैलेंट घर बैठे ही पूरी दुनिया देख सकती है। ओजस्वी, मैंने कई बार देखा है कि मुसीबत के समय भी सोशल मीडिया बहुत काम आता है।
1: बिल्कुल आता है मोमल, सोशल मीडिया सामाजिक भलाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। किसी बीमार के इलाज के लिए फंड इकट्ठा करना हो, खोए हुए व्यक्ति को ढूंढना हो, या बाढ़ भूकंप जैसी आपदा के समय लोगों तक मदद पहुंचानी हो, सोशल मीडिया की ताकत से चंद घंटों में ही लाखों लोग एकजुट हो जाते हैं। ये मानवता को जोड़ने का भी बहुत बड़ा साधन है।
0: यानी कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि प्रगति का भी साधन है। चलते चलते हमारे श्रोताओं को कोई मूल मंत्र देना चाहोगे?
1: बस यही कहूंगी मोमल कि श्रोताओं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करिए, पर सोशल मीडिया को आपका इस्तेमाल मत करने दीजिए। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें, अच्छी और प्रेरक चीजों को फॉलो जरूर करें, और अफवाहों से बचें, और अपने हुनर को निखारने में इसका उपयोग जरूर करें।
0: तो दोस्तों, आज से ही अपने सोशल मीडिया का फीड को बदलें ताकि आपका भविष्य बदल सके। आकाशवाणी पर हमारे साथ बने रहिए और तब तक सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: दोस्तों, हम सब ने इंसानों को आपस में बात करते देखा है, फोन पर बात करते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का फ्रिज आपकी वॉशिंग मशीन से बात करे, या फिर आपकी कार आपके घर के एयर कंडीशनर को मैसेज भेजे? आप सोच रहे होंगे ओजस्वी आज एक कैसी जादुई बातें कर रही हो, लेकिन श्रोताओं, ये जादू आज हकीकत बन चुका है और विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं IoT, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
3: ओजस्वी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुनने में भले ही कोई बहुत भारी भरकम साइंटिफिक टर्म लगे, लेकिन असल में ये हमारी जिंदगी या हमारे जीवन को बेहद आसान और स्मार्ट बनाने की तकनीक है।
2: श्रोताओं, जिनमें बहुत से किसान भाई हैं, गृहणियाँ हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो सीधे सीधे ये समझना चाहते होंगे कि इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है।
3: बिल्कुल, अगर सरल शब्दों में कहा जाए ओजस्वी, तो हम अब तक इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर करते थे, लेकिन जब हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजें जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज, कार या पानी की मोटर में छोटे छोटे सेंसर लगा दिए जाते हैं और उन्हें इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, तो वह चीजों में आपस में बात करने लगती है, यानी कि ये कहा जाए कि वह चीजें आपस में भी बात करने लगती हैं। इसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी चीजों का इंटरनेट कहा जाता है।
2: अरे वाह, चीजों का इंटरनेट। मुमल, कोई ऐसा एग्जांपल तो दो हमारे दोस्तों को जो वो अपने घर से जोड़कर देख सके।
3: चलिए, हमारी डेली लाइफ रूटीन से ही एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप तपती गर्मी में ऑफिस या खेत से थककर अपने घर लौट रहे हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी आपके घर से 1 किलोमीटर दूर होगी, गाड़ी में लगा GPS आपके घर के AC को इंटरनेट के जरिए सिग्नल भेज देगा कि मालिक घर आ गए हैं। आपका घर पहुंचने से पहले ही कमरा ठंडा हो जाएगा और जैसे ही आप दरवाजे पर पहुंचेंगे, स्मार्ट लॉक आपका चेहरा पहचान कर अपने आप खुल जाएगा। आपको कोई चाबी लगाने की या बटन दबाने की जरूरत ही नहीं होगी।
2: कमाल है मुमल, ये तो बिल्कुल अलादीन के चिराग के जैसा लग रहा है। लेकिन ये तो हुई शहरों या अमीर घरों की बात, क्या हमारे ग्रामीण इलाकों या खेती किसानी में भी IoT तकनीक का कोई फायदा है?
3: तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कृषि के क्षेत्र में IoT का बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ रहे हैं, जैसे हम स्मार्ट फार्मिंग कहते हैं। एक किसान भाई अपने खेत में मिट्टी की नमी जांचने वाला छोटे छोटे IoT सेंसर लगा सकते हैं। जैसे ही खेत की मिट्टी सूखेगी, वह सेंसर इंटरनेट के जरिए सीधा पानी के पंप यानी कि मोटर को सिग्नल भेजेगा और मोटर अपने आप चालू हो जाएगी। जैसे ही खेत में पर्याप्त पानी भर जाएगा, मोटर खुद अपने आप बंद हो जाएगी। इससे पानी की बचत भी होगी और बिजली भी कम यूज होगी।
2: अरे वाह, यानी हमारे किसान भाइयों को रात रात भर जाग कर पानी चलाने के लिए खेत में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मोमल, स्वास्थ्य यानी सेहत के मामले में ये तकनीक बुजुर्गों के लिए कैसे मददगार है?
3: स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ये बहुत मददगार साबित होती है, ये जीवन रक्षक साबित हो सकती है। ओजस्वी, आज जो हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, वह भी IoT का हिस्सा है। वह हर पल हमारी धड़कन, ब्लड प्रेशर को मापती रहती है और घर में कोई भी बुजुर्ग अकेले हैं, उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाए या बिगड़ जाए तो वह गिर जाए, वह उस घड़ी को तुरंत उनके डॉक्टर या परिवार के मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट का उनकी लोकेशन भेज देती है। इसी वजह से उनका समय पर इलाज भी हो जाता है।
2: सचमुच मोमल, ये तकनीक तो इंसानी जिंदगी के लिए एक वरदान की तरह दिख रही है। लेकिन जैसा कि हर तकनीक के दो पहलू होते हैं, क्या IoT से जुड़ी कुछ सावधानियां भी हैं जो हमारे दोस्तों को रखनी चाहिए?
3: बहुत जरूरी है सावधानियां हैं। तुमने चूंकि इस हर चीज से हमारी हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होती है, इसलिए डाटा सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेसी का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर कोई हैकर आपके घर के स्मार्ट सिस्टम को हैक कर ले, तो वह आपके घर के तालों या कमरों पर भी कब्जा कर सकता है। इसीलिए सावधानी यही है कि जब भी कोई स्मार्ट डिवाइस खरीदें तो अच्छी कंपनी से खरीदें, उसका पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और समय समय पर बदलते रहें।
2: ये तो तुमने बहुत ही कमाल की सलाह दी है मुमल, तकनीक का आनंद लें लेकिन पूरी की पूरी सावधानी के साथ। आज तुमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीक को इतने सरल और देसी अंदाज में समझा दिया।
3: श्रोताओं, तकनीक से डरिए मत, इसे समझिए और अपने जीवन को स्मार्ट बनाइए।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ओजस्वी, अब वक्त हो चुका है हमारे उन साथियों के लिए जो अपने करियर को लेकर सहज हैं। जी हाँ, वक्त हो चुका है आपके पसंद आने वाले रोजगार सूचना का।
1: बिल्कुल मोमल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की। हमारे जो भी साथी आईटी या कंप्यूटर क्षेत्र में सरकारी सेवा की राह देख रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर है।
0: और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि है 23 जून।
1: और जहां तक योग्यता की बात है, तो इसके लिए कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसकी अन्य जानकारी, पदों की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जरूर जाएं
0: और वहां आपको विज्ञापन या नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। उसमें आप अपनी श्रेणी और पद के अनुसार पूरी योग्यता की जानकारी जरूर देख लें। दोस्तों, ये एक मौका है खुद को साबित करने का, तो पूरी तैयारी से जुट जाएं। दोस्तों, हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे थे दो सवाल, अब वक्त हो चुका है उनका जवाब जानने का। आज का पहला सवाल था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी

0: कौन से देश कर रहे हैं? उसका सही जवाब है कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
1: दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपने हमारे प्रोग्राम में जान लिया होगा, ये दिवस मनाया जाता है 13 जून को। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मुमल, आज सुबह जब मैं स्टूडियो आ रही थी ना, तो रास्ते में मैंने एक बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखा। एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे गीली मिट्टी में एक टूटा हुआ खिलौना कार का पहिया बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर जो एकाग्रता और खुशी थी ना, वो बेमिसाल थी। उसे देखकर मुझे लगा कि बड़े होने के चक्कर में और इस भागदौड़ में हम अपने भीतर के उस क्रिएटिविटी को कहीं पीछे ही छोड़ आए हैं।
0: अरे वाह जसवी, शुरुआत तो इतनी गहरी और दिलचस्प, दिल को छूने वाली बात से कही तुमने। बिल्कुल सही कहा, आजकल आज के ज़माने में हम सभी आगे भाग रहे हैं और मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। ऑफिस की फाइल, घर के काम, खेती के लिए किसानों की चिंताएं। लेकिन ओजस्वी, कई बार हम सोचते हैं कि रचनात्मक या कि क्रिएटिविटी ये सिर्फ किसी राइटर्स के या फिर एक्टर्स के लिए ही है।
1: मोमल, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों के लिए ही है। असल में ये अपने रोजमर्रा के साधारण काम को किसी नए, किसी अलग या फिर सुंदर तरीके से करना ही रचनात्मकता है। उदाहरण के लिए, जब हम रसोई में बची हुई सब्जियों से या दाल से कोई नई या स्वादिष्ट डिश बनाते हैं, तो वो कुकिंग की रचनात्मकता है। या हमारे किसान भाई जो अक्सर खेतों में कबाड़ के लोहे या प्लास्टिक की बोतलों से पक्षियों को भगाने या फिर पानी छिड़कने के लिए कोई नया जुगाड़ यंत्र बना लेते हैं, वो भी गजब के इनोवेटर और क्रिएटिव लोग हैं। अच्छा मोमल, अब मैं पूछना चाहूँगी कि अब इस रोज़ के व्यस्त रेडियो शेड्यूल और भागदौड़ के बीच ये रचनात्मकता सुकून कैसे ढूंढ लेती हैं?
0: मेरा तो बहुत ही आसान है। जब भी मुझे लगता है कि काम का दबाव बहुत बढ़ गया है, तो मैं अपने घर की बालकनी में जाती हूँ। वहाँ लगे पौधों को पानी देना, सूखी पत्तियों को झाड़ना और आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको फील करती हूँ। कभी कभी मन उदास होता है तो गाना भी गाती हूँ और पुरानी डायरी उठाकर उसे पढ़ने भी लग जाती हूँ। सच मानो ओजस्वी, वो 15 मिनट ऐसे लगते हैं कि दिल की बैटरी बिल्कुल 100% चार्ज हो गई हो।
1: बिल्कुल मुमल, न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान भी अब इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है कि रचनात्मकता का हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें हमारा दिल लगता है, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना, पेंटिंग करना या कोई भी ऐसा काम, तो हमारे दिमाग में डोपामीन या सेरोटोनिन नाम के हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हॉर्मोन्स हमारे तनाव और एंग्जाइटी के स्तर को तुरंत कम कर देते हैं। हम हमारे दिमाग के लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करते हैं। इसके लिए निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता भी बढ़ सकती है। लेकिन मोमल, आज के दौर में इस रचनात्मकता के रास्ते में एक बहुत बड़ा विलेन आ गया है, वो है हमारा स्मार्टफोन और उसकी लत। तुम्हें क्या लगता है, आज की पीढ़ी ऑनलाइन वीडियो में खोई रहती है, उन्हें स्क्रीन टाइम से निकाल कर रचनात्मकता की तरफ कैसे लाया जाए?
0: ओजस्वी, आजकल ये फ़ोन या फिर ये जो आप बोल रहे हो ऑनलाइन स्टेज पर काम करते हैं, ये हर घर की कहानी है। बच्चे हो या बूढ़े, सभी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, बच्चों को सिर्फ चिल्लाकर ये कहना कि मोबाइल बंद कर दो कभी काम नहीं करेगा। हमें उन्हें मोबाइल से ज़्यादा दिलचस्प कोई और चीज़ देनी है। यहाँ भूमिका आती है माता पिता की। अगर माता पिता रविवार के दिन खुद अपना फ़ोन साइलेंट पर रख दे और बच्चों के साथ खेले, बैठे, कागज़ की नाव बनाए, मिट्टी के घरौंदे बनाए या फिर घर के पुराने सामानों में से कोई क्राफ्ट बनाए, तो बच्चे भी कभी मोबाइल की तरफ नहीं भागेंगे। ऐसे ही तो क्रिएटिविटी आगे बढ़ती है।
1: 100% सही है उमल, रचनात्मकता सिर्फ समय बिताने या दिमाग तेज करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो बिखरते हुए परिवारों को आपस में जोड़ने का मजबूत गोंद है। जब पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई करता है, त्योहारों को पर घरों को सजाता है, तो जो यादें बनती हैं वो ताउम्र रहती हैं। अच्छा उमल, बात तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन रेडियो की भी अपनी सीमा होती है, तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी करने की आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: दोस्तों, रोज अपने लिए समय निकाले 10 से 15 मिनट और अपनी क्रिएटिविटी को और नया रंग दें। और इसी के साथ साथ, अगर आपको लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते, तो पूरे दिन में से कम 15 से 20 मिनट तो ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप अपने मन का कुछ करें, जिसमें आप अपने गाना गा सकते हैं, कुकिंग की जो आपकी इंटरेस्ट है उसको आगे बिल्ड कर सकते हैं, और दफ्तर की जितनी भी चिंताएं हैं उन सभी को दफ्तर तक छोड़कर घर में आएं। जब आप घर में एंटर करते हैं तो पॉजिटिविटी को साथ लेकर एंटर करेंगे, तो आपको आपका मन भी खुश होगा और जो आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में चाहते हैं वो भी बरकरार रहेगा। बच्चों से बातें करें, उनके बारे में जानें और उनके मन पसंदीदा का जो चीज़ है वो साथ में मिल बांट कर करिए। चाहे वे पुराने गाने सुनना हो, फोटोग्राफी करना हो या सिलाई करना हो, बस हर काम साथ बैठ कर करेंगे तो घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बढ़ेगा, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी।

0: बिल्कुल मुमल, जिंदगी सिर्फ सांसें काट कर बिताने के लिए नहीं है, इसे रचनात्मकता के खूबसूरत रंगों से सजाने के लिए है। अपने भीतर छुपे उस मासूम बच्चे, उस कलाकार को कभी मत खोने दीजिए, क्योंकि यही आपको अंदर से जिंदा रखता है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, देर किस बात की, आज ही उठाइए अपने मन के रंग और अपनी कलम, अपने पौधे सजाइए, अपनी जिंदगी को सजाइए और सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी। आप सभी इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करिए। हमारा वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, अपना ध्यान रखिए। मैं मूमल राजपुरोहित
0: और मैं ओजस्वी भटनागर
1: आपसे विदा लेते हैं।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे जोश से भरा हुआ कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति लेकर के आई थी मूमल राजपुरोहित और ओजस्वी भटनागर। ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर दिवस 5:05 से 5:55 तक। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर संध्या के 5:56 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, सांध्य की किरणों की पहली दस्तक के साथ मरुधरा की सांस्कृतिक धारा में आपके साथ मौजूद होते हैं हम। आज की सुहानी सांध्यकालीन सभा में भी आप सभी का आत्मीय अभिनंदन है, अभिवादन है। साहित्य, संगीत और सूचनाओं के संगम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान मनोरंजन का एक विशेष श्रृंखला कार्यक्रम और कार्यक्रमों की भरमार। आज संध्या 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। 6:05 पर समय रहेगा समाचारों के तुरंत बाद मधुर सुरों से सजी हुई फिल्म संगीत की महफिल का। आज हम आपसे बातें करेंगे हमारी एक दैवीय नेमत आंखों के बारे में। 6:30 पर हम रुख करेंगे जयपुर केंद्र की ओर, जहां पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसके पश्चात होगी जिले की चिट्ठी और इसके पश्चात आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से ही प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में।

संध्या 7 बजे आपके लिए लेकर के आएंगे हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोताओं की मनपसंद कार्यक्रम गीत गूंजे गांव गुआड़ कार्यक्रम को। फरमाइश पत्रों और ईमेल पर आधारित लोकगीतों के इस कार्यक्रम खंड में आपके साथ होंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और कुंजीलाल स्वामी। रात्रि 7:45 पर दिन भर की थकान मिटाने के लिए सुगम संगीत होगा और रात्रि 8 बजे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का साप्ताहिक लेखा जोखा बीकानेर दर्पण। इसकी प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा की और इसे स्वर देंगे श्री महेश उपाध्याय, संयोजन अमित सिंह का। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत। रात्रि 8:45 पर हम सुनेंगे दिल्ली से समाचार संध्या कार्यक्रम और रात्रि 9 बजे समय रहेगा न्यूज एट 9 का। रात्रि 9:15 पर मधुर सुरों से फिर से सजेगी महफिल संगीत फिल्म संगीत की। रात्रि 9:30 पर दिल्ली से आप सुनेंगे संस्कृति भारती। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों के लिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोताओं, रात्रि 11 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के पश्चात आज की सभा का समापन होगा। आशा है सुरों और सूचनाओं का यह सफर आपकी शाम को और अधिक यादगार बनाएगा। तब तक शब्दों की मर्यादा और सुरों के माधुर्य के साथ हमारा साथ यूं ही बना रहे। आशा है आज का यह प्रसारण आपकी स्मृतियों में एक अमिट छाप छोड़ेगा। तो समय हो चला है संध्या 6 बजे बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और उसके तत्पश्चात आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे फिल्म संगीत की सुनहरी महफिल लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3

मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में एक विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। शाम के 6:05 होते हैं। सुरों का कारवां और यादों का सफर, लीजिए वक्त है रुपहले पर्दे के उन नगमों का जो कभी पुराने नहीं होते। सूर्यदेव सुरों से सजी ये महफिल केवल आपके लिए, जहां हर धुन एक कहानी कहती है। तो आइए डूब जाते हैं फिल्म संगीत के ससीन समंदर में। मैं आपका वही पुराना दोस्त, वही शाम का साथी, जिसकी आवाज सुनकर दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाया करती हैं। शाम ढल चुकी है, रेत के टीले सुनहरे हो रहे हैं और हवा में प्यार की महक घुलती जा रही है। आज की हमारी ये रोमांटिक शाम खास है। आज हम बात करेंगे आंखों की। हाँ, बस आंखें, वो दो छोटी छोटी सी खिड़कियां जो दिल की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। दोस्तों, आंखें क्या है तो मैं नहीं कहता, शायर कहते हैं। तेरी आंखों में न जाने कैसा जादू है, आशिक इसमें झांकते ही खो जाते हैं। आंखें न सिर्फ देखती हैं, वो बोलती भी हैं। एक नजर में इश्क हो जाता है साहब, एक झलक में दिल चुरा लेती हैं ये आंखें, और एक आंसू सारी दास्तान कह जाता है। आज की शाम हम इन्हीं आंखों की मस्ती में खोएंगे, फिल्मी गीतों और शायरियों के साथ। तो सुनिए ना मेरे प्यारे श्रोताओं, जब पहली बार कोई आंखों में आंखें डालता है तो क्या होता है? आंखों ही आंखों में इश्क।

ये क्या साथियों, इधर आंखों में इशारा हुआ और यहाँ पर हमारे मौसम ने दस्तक दे दी है। इसका मिजाज बड़ा बदल गया। आंधी तूफान बारिश ये तो आज का रोज का ही कार्य होता है। हम लोग राजस्थानी, हम लोग जो इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, ये इसकी सारी गुस्ताखियाँ जानते हैं साहब। हाँ, अभी आपने सुनी CID की ये क्लासिकल धुन मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। कितना प्यारा इशारा है ना। एक आंखें ही दिल की ज़ुबान बन जाती हैं जब। अब सोचिए ना, जब कोई मखमली आवाज़ में, जैसे कि रफ़ी साहब की, अगर आपसे कोई कहे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो क्या दिल नहीं पिघल जाएगा। राजेश खन्ना और नंदा की वो मस्ती वाली आंखों की बातें अभी भी दिल को छू जाती हैं। तो इस तूफान से मत घबराइए और आनंद लीजिए मेरे साथ में इन प्यारे से गीतों का।

मेरे प्यारे श्रोताओं, हाथ उठाइए जिनकी आँखें किसी की भी नींद उड़ा देती हैं। भाई शायर कह के गया है कि तेरी आँखों की गहराइयों में जो डूबा मैं, समंदर से भी गहरी हैं ये हो गया हूँ मैं। एक नज़र झुकी और इकरार हो गया, बिना कहे ही सब कुछ बयां हो गया। अब सुनिए ना, एक और जादू भरी चीज़ आपसे मिलवाते हैं। भले ही बाहर काफ़ी बारिश का सा माहौल है, लेकिन आँखों की गुस्ताखियाँ आज भी उसी प्रकार से कहर डाल रही हैं जिस प्रकार से मौसम ढाता है।

आंखों की गुस्ताखियां हम दिल दे चुके सनम, देखी न कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की ये धुनन भरी आवाज, सलमान और ऐश्वर्या की आंखों वाली वो शरारत, कितना सुंदर है ना ये गीत। और देखी ना इस गीत ने भी इस मौसम की कितनी चाल बदल दी है, खुशनुमा बना दिया है इस मौसम को। आंखें गुस्ताख हो जाती हैं, चुरा लेती हैं नजरें, और दिल कहता है बस माफ कर दो इनकी शरारतों को। लेकिन ये आंखें आज जैसे बारिश में जब आप लोग किसी भी तरह से आनंद लेते हैं तो ये बहुत खुश होती हैं कि आंखों की जो आप चमक है इसमें देख पाते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी आंखें भी होती हैं जो इसी बारिश के अंदर पानी के साथ में अपने आंसुओं का दर्द भी छुपा लेती हैं। तो आंखें न सिर्फ प्यार दिखाती ही हैं बल्कि दर्द भी छुपा लेती हैं।

0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। चिराग फिल्म की लाजवाब धुन रफी साहब और लता जी की आवाज में अगर आप सुन लेते हैं तो सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है जब सामने वो आंखें हैं। और ये सुनकर तो दिल पिघल ही जाएगा जब हम आपको सुनवाएंगे ये हमारा अंतिम इस फिल्म संगीत का ये गीत कि आंखें खुली हो या हो बंद।
1: थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही एक दुआ छोटी सी हमारी तरफ से, आपकी आंखों में हमेशा खुशियां झलकें और किसी की आंखों में आपका प्यार सदा सर्वदा के लिए बना रहे। तो धन्यवाद। ये थी आपकी रोमांटिक शाम, जिसे हमने आंखों के माध्यम से आपके

0: शाम को कुछ और रंगीन बनाने की कोशिश की। कल फिर मिलेंगे नई शाम नई बातों के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 होते हैं, आपसे कुछ देर में सुनेंगे आप हमारे जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल, महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त, 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जाँच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइड्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
2: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ

लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन

0: की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
1: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहाँ प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपये सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रुपये से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
2: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
0: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे, इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
3: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत कप प्रतिनिधित्व करते हुए दो स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक

0: आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
1: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनकी उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देख

0: हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, इंडियन मिलिट्री एकेडमी रिपासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई में विकास रे दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माए साफ कोई और नीतियां माए आगे री सोचूं देश बरकतरा गेला माथा चाल रियो है। और प्रदेश माए कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो, पारा माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है, जो महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट आखिरी पग पार कर फौजी अहलकार बनवारो गौरव हासिल कीनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौरों सेवा दे रहा है। केंद्र सरकार माने 30 जून आ नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस अकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वह ऑपरेशनल रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वह दिल्ली एरिया रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा और दक्षिण पश्चिम कमानी संभाली। असम रा जोरहाट माए आज समारे भारतीय वायुसेना रो एक जहाज AN-32 हादसा रो शिकार फेंक्यो। इन कारण 5 जवान शहीद फेंक्या। वायुसेना कन्यू करीचिया सोशल मीडिया पोस्ट रहे मुजब हादसा रहे कारण स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम री मौत वे की। हादसा री ठौर सर्वाती जांच सागे जरूरी कार्रवाई करी जा रही है। ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखीचिया सम्मेलन माए बीजा री प्रणालियां रे बारा माए ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइट्स इन सीड सिस्टम बनावन री मंजूरी दी रीची है। भारत री सदारत माए भी आई सम्मेलन माए ब्रिक्स रा सदस्य देश कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी सारू एक्सलेंस सेंटर बनावन रोई फैसलो कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो के देश रा 87% किसान नाना और सीमांत है, जाने मजबूत बना रही देश रे खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है।
2: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़

0: समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माय बदलाव रेठा करणसार वणाइचिया आयोग ने सरहदी जिला माय आबादी रा बदलाव री जानकारी करण बाबत कहो है। वे आज इंबारा माय राखी जी मीटिंग माय बोल रहा है। गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगर और औद्योगिक शहरों रो दौरों कर हालात रो जायजो लेवन सारू कहो। ध्यान जोग है कि केंद्र सरकार घुसपैठ और दूजा कारणों आबादी माय बदलाव न रोकने रा उपाय सुझावन सारू आला दर्जा री समिति बनाई है। देश माय लाडला 10 साल माय जन्म री बगत हर 1,000 लड़का ने मुकाबले लड़कियां री तादाद 918 बेधर 929 वैगी है। स्कूला माय माध्यमिक स्तर माथे टाबनियां री तादाद 75 बेधर 80% रे करीब वैगी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय रे मुजब केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर माय टाबनियां ने मजबूत बनावन रो मोटो अभियान बन रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश माए हर हलका माए तरक्की भी है। वे आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। केंद्र माए एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला माथे आगे बधायो है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
1: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। पहली 8 प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपया सालाना ही जो अब बेधर 2,00,000 रुपया बत्ती वे की है। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है। जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आ गई प्रदर्शनियां रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगों ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए जनता की समस्याओं मौके निपटार वन सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनाओं जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वन ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो।
3: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजन लाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करना।
1: पालीरा गुढ़ा एंदला माए लगाई चाह ग्रामीण सेवा शिविर माए टीबी री बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवारा काने ऑनलाइन तरीकों दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रजरिए पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवारा न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तहत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवारों री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताई चियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाय

0: जनरी शंका है। इन विच लाड़ला 24 घंटा में कई ठोड़ा बिरखा भी सबों बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता रामगढ़ में बरसियो। श्री गंगानगर चूरू और सीकर में ओला पड़िया जिनू तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात शुरू हुई बारिश रो दौर रुक रुक कर आज सवारे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात भी। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहण री संभावना है। दूजी कानी जैसलमेर में जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने शाखा री कटाई और वाने भिड़ीकरण का काम में सावचेती रखन सारू कहो है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आखी दुनिया में तैयारियां चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशों में भांत भांत रा कार्यक्रम रखा जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दों योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र में लोगों ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला में प्रदेश में आई कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इन बीच अहमदाबाद में भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सोनारा 2 तमगा जीतने वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
1: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर फौजी स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम राखी चियो। इन माय फौज और सिविल सोसाइटी बीच मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले रहोसा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भिया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरू ओ दौरो खास मान्यो चाचियो है। इरा पहला दौर माय काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर में वह काली स्लोवाकिया सारू रवाना भेजा वेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वह फ्रांस रा एवियन में 16-17 जून ने भेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन में शामिल भेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस में विवाटेक सम्मेलन में शिरकत करेला। आखिर में खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री NDA सरकार री नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश में कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। शाम का समय है, शाम के 7 बजते हैं। गौधुली बेला में खेतों की सौंधी महक और चौपालों की गूंज लेकर हाजिर हैं हम, गूंजे गांव गुवाड़। अब प्रसारित होने जा रहा है आपका सबसे प्रिय फरमाइश।

एक लोकगीतों का कार्यक्रम गीत गूंजेगा अगुआड़, एक फरमाइशी मंच जहां लोक धुनें अपनी ही बात बोलती हैं। यह कार्यक्रम जहां राजस्थान की मिट्टी की सौंधी धनक आप सुनते हैं, खेतों की हलचल सुनते हैं, बरसात की खुशबू चौपाल की कहावतें, मेलों की चहल पहल, धरती पुत्रों के दो वो गीत जो रोज़मर्रा की मेहनत की गूंज बतलाते हैं। हर गीत में होती है हमारी मातृभूमि की अपनत्व भरी महक और वो सौंधी गंध। हर गीत में गाँव का दिल लेकर आए हैं ग्रामीण जगत कार्यक्रम में। आपके साथ होंगे श्री कुंजीलाल स्वामी और डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ग्रामीण जगत कार्यक्रम में गीत गूंजे गांव ग्वाड़। इसमें शामिल हैं आपके ईमेल और फरमाइशी पत्रों पर आधारित लोक गीत।

0: कार्यक्रम सुनना सगला भया अरबेना ने आप रहे तले भरत कुमार जाजड़ा अर
1: तोला रामरा घणान घणा मोकला मोकला राम राम।
0: तोला राम भाई, देखो आज तो मौसम भी सुहावनो होड़ो है, छाटो छिड़को थोड़ो घणो हुयो है, मौसम ठंडो हुयो है, हवा आ रही है, पून बजे और माचो ढाल जको है, देखो दादू जी सूता है, रेडियो हाथ रे मैंने है, काकी जको है गाय दूरी है, गाय दूता दूता भी ध्यान रेडियो रखनी है काकेरी, और टाबरिया जक है नी बियारो भी ध्यान रेडियो रखनी है, और सगड़ा अडीक राख रहा है के गूंजे गाँव गुआड कार्यक्रम अंतर्गत आज आपा बियारी फरमाइशरा लोकगीत सुना सा।
1: बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात बता दी, आज तो जिको मौसम भी है वो साथ दे रही है आपा रहो कि भी गूंजे गांव गुवाड़ रो जिको कार्यक्रम है बीरे सारू आपा जिका नुया और पुराना लोकगीत है वे लोगारी पसंद रहा आपरे सुनने वाला श्रोताओं री पसंद रहा वे गीत ले रहे हैं आपा।
0: बिल्कुल ले रहे हैं, और देखो मारे खाने तो लैपटॉप भी है और मारे खाने जो है दूसरा भी कागजिया भी है, इस वास्ते है कि अगर कोई भी भाई आपने ईमेल करना चाहे तो हाथों हाथ आपा लैपटॉप रे मैंने कंप्यूटर मैंने बिहारी ईमेल बांचला और बांचर फरमाइश बिहारी सुना दा।
1: बिल्कुल, अपारे कार्यक्रम री आई सगलों बड़ी विशेषता है भी हाथों हाथ भी कोई सुनना चाहे तो आपने वो लिखकर भेज सके है।
0: बिल्कुल भेज सके, और देखो फरमाइश जकी है बिहारी सुनावा, लेकिन बीसों पहली ठिकानों बता दा आपारे मेल रो कि अगर कोई भाई आज रही कार्यक्रम में अबार ही आपने मेल भेजे तो आप आज रहे कार्यक्रम में और अबारी बीरो मेल जो है शामिल कर सका।
1: बिल्कुल, तो बता दो, देखो बढ़िया ठीक रहसी आप।
0: हाँ, तो अगर आज आप माने कार्यक्रम में मैंने मेल भेजो तो ठिकानों नोट कर लो सा, ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com। खातो खातो बोल गयो जन हो सके आपने समझ में नहीं आए उसी, तो इस वास्ते मैं धीरे धीरे एक फिरूँ बोलूँ, GRAMIN ग्रामीण, JAGAT जगत, BIKANER बीकानेर, ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com।
1: और कागदिया सारू मैं बता दूँ कि भाई देखो गुंजे गांव गुवाड़ और द्वारा आकाशवाणी केंद्र बीकानेर बिल्कुल आसान सो है, आपरी पसंद रा जितना भी गीत अल्ला गीत सुनना चाहो ब्या लिखकर भेजो और मैं हाजिर हो सा आपरा पसंद रा गीत ले हमेशा।
0: बिल्कुल, और अब आपने निजर करा सा आपरी फरमाइश रो पहलो गीत लो और पछा आपने बताऊं का फरमाइश ही केरी, सुनो सा ओ गीत लो।

लहरियो समंदर खान सतार खान और यारी साथियारी आवाज रमे ने और इन्हें सुनने वास्ते उड़ीक राखी ही धर्मेंद्र छीपा जी। और धर्मेंद्र छीपा जी जो है मैंने मेल करियो हो और मेल रे मैंने बे उम्मीद रखी ही के मैं ब्यारो नाम बाँचा और धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा पूजा परिहार ए सगड़ा भोपालगढ़ सू है। अगलो मेल जो है वो मारखने आयो है रायसिंहपुर जिला गंगानगर सू और मेल भेजन वाला है अशोक बब्बर पवन राजेश बब्बर अजय राहुल और मनु बब्बर। जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर सू नियमित श्रोता है बेबी माने मेल भेजियो वास्ते अशोक कुमार शाही संतोष शाही राजश्री गौरव शाही। वरण नगर कोल्हापुर महाराष्ट्र सू अमित नारायण सांगली जिले सू आयो है अल्ताफ हुसैन गाँव घमंडिया जिला सूरतगढ़ तहसील भी सूरतगढ़ है और गंगानगर सू आयो है जगदीश ढुकिया प्रमिला ढुकिया ज्योति सरिता तमन्ना सचिन विष्णु और शिवम ढुकिया। इरलो मारखने घना सारा जो है कागदिया आउड़ा है अब सगड़ा तो देखो शामिल करना संभव कोनी मैं एक दो कागदिया बाँचना चाहूँ। गाँव कुंदनपुरा तहसील सूरतगढ़ सू तहसील बाड़मेर सू माने लिखन वाला है जगदीश सुमरा मोहन लाल सुमरा नरेश कुमार सुमरा और सुमरा परिवार। इर अलावा जयनारायण व्यास कॉलोनी सू अशोक कुमार शाही संतोष शाही और गौरव शाही माने कागज भी भेजियो है सा। छत्रपति शिवाजी नगर सू राजेश सेन सुरेखा शुभम सेन अक्षय सेन और यारा साथी। और अबे भाई लोगा आपने निजर करूँ सा आगलो गीतर लो आपरी फरमाइश रहे अनुसार और बाद में आपने नाम बाँचर बताऊँ क्या फरमाइश ही केरी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
5: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
6: राहगिनी और साथियों रे गायडो, आप गीत सुनियो हो संदेशों पहली और इन्हें सुनो चाहता हा डबवाली हरियाणा सुन जेके बाकोलिया, सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल, मीनू बाकोलिया, सादुल शहर गंगानगर सु ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान और बीकानेर कमला कॉलोनी सुन एडवोकेट सुभाष खत्री, पटेल नगर मलोट पंजाब सु रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप बेपी, आरजू राजोरिया और अमरगढ़ तहसील सादुल शहर सु कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर हरविंदर, राजा सिंह, कुलविंदर कौर मान और के एस मान। और देखो भाई लोग, अबे आप सुना हा आप री पसंद रो निजर कर रहे हैं आगलो गीत सीमा मिश्रा री आवाज में सुनो थे वो गीत।

0: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

भाई लोगा, थोड़ी देर पहली गीत अड़लो सुनियो सीमा मिश्रा की आवाज में पपैयो, और इन्हें सुनने वास्ते मैंने घणाई मेल आउड़ा है, फरमाइश आउड़ी है। नाम बांचू हूँ बाबा रामदेव रोड गंगा शहर बीकानेर सू। इन्हें सुनने वास्ते अडिक राखी दिव्या सारस्वत, मुरली मनोहर सारस्वत और लता सारस्वत। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड सू मैंने मेल भेजो है मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत। हरियाणा सू मैंने मेल भेजो है साहिल कागरा, मोनी कागरा, प्रिंस बोट, सीताराम कागरा और तन्वी बोट। चक 15 PS जिला श्रीगंगानगर राजस्थान सू मैंने मेल भेजो है सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, रॉबिन और इंर परिवार का एक सदस्य है सिडनी ऑस्ट्रेलिया सू अदृश्य पाल, ए भी कार्यक्रम ने बराबर सुने। सरधना मेरठ सू आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, बेबी अव्या और अंशिका जैन, और मालियान सू अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। रायपुर छत्तीसगढ़ सू विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर। इन अलावा गांव जाखोद राजस्थान सू संभुदयाल खटक, विमला देवी खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश खटक, दीपक खटक और पूरो खटक परिवार। अबे भाई लोग निजर करूं आपने आगलो गीत लो और बाद में आपने बताऊं आप फरमाइश केरी ही।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो सा सुनियो आपा गीत और इन्हें सुनो चाहो तह दतरंगी सु भगवत वर्मा, लेवई सु गुलाबदास, सिंगनी सु दिनेश वर्मा, लच्छनपुर सु विश्वनाथ साहू मावली, सिंगारपुर सु सालिक पुजारी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब सु हरदेव मिका, बलविंदर जेतग और मिका, आदर्श नगर मलोट पंजाब सु राज शर्मा, मीना योगेश और सौरव शर्मा।
3: इलावा गांव सेसवा, जिला झुंझुनू सु नेकीराम रेवाड़, संतोष और ममता, गोविंदपुरा नीमका थाना सु दातार सिंह, संगीता तुषार, रिंकी शेखावत और यहाँ साथी, सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा सु विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमारी ईसानी, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान सु रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और ग्राम पोस्ट मऊ तहसील मांगरोल जिला बारा सु श्रवणलाल योगी, गायत्री योगी, सोनिया, उमा, मयंक और योगी परिवार। और अबे भाई लोगा, निजर गना आपने आग लोगी तड़ लो।

0: शेर मोहम्मद सुलखानिया रहेका एउटै यी गीत रे साथै आज रे कार्यक्रम रो भगत हुयो पुरो आप रे भाई तोलाराम आर
1: भरत कुमार जाजडा ने देव सासीख घणान घणा
0: राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। संध्या की 7:45 और 17 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। बीकानेर की धड़कनों को पिरोता यहाँ की कला, साहित्य और संस्कृति का अनूठा दस्तावेज सुनते हैं बीकानेर दर्पण। श्रोताओं, इतिहास के झरोकों से झांकती हवेलियां हो या आधुनिक साहित्य की नई इबारत रचना, ये हमारा शहर, हमारा यह शहर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। आज के इस 148वें अंक में हम रूबरू होंगे यहाँ की कई सारी सांस्कृतिक फिजाओं में घुली हुई नई हलचलों से। बीकानेर की साहित्यिक विरासत को सहेजने के इस प्रयास में आइए जुड़ते हैं आज की इस विशेष कड़ी से। प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेघा की और इसे स्वर दे रहे हैं महेश उपाध्याय और संयोजन अमित सिंह का है। तो लीजिए आनंद अपनी ही धरती, अपनी ही बीकाना, इसी की समय यात्रा, समय यात्रा पर सुनते हैं बीकानेर दर्पण।

बीकानेर दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते बुधवार यानी 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार को 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में यानी केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता के अवसर पर देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में बीकानेर में स्थित बड़ा गणेश जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना सुबह 8 बजे की गई। चलिए आपको भी वहीं लिए चलते हैं। Yeah.

0: और अब सुनिए बीकानेर विधानसभा पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने आकाशवाणी से बात करते हुए क्या कहा।
1: आज हमने सबने मिलके गजानन जी की पूजा की है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे होने पर पूरे देश में प्रत्येक मंदिरों में पूजन किया जा रहा है। उसी के तहत देवस्थान विभाग की तरफ से यहाँ गणेश जी का पूजन किया गया, गणेश जी की सेवा की गई, आरती की गई। हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जो वर्षों से इस जनता की सेवा में लगे हैं, उनकी उम्र आगे बढ़े और वो इसी प्रकार जनता की सेवा करते रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारा देश है वो स्मृति में आगे बढ़े, हमारे देश में सुख शांति रहे और किसी प्रकार की देश में समस्या नहीं रहे। अगर कोई समस्या है तो भगवान उसको हल करने में हमारा सहयोग करें, सभी लोग आनंद से रहें, प्रेम से रहें, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है।
0: बीकानेर के संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा ने बताया।
2: देखिए, आज ये जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ये जो पूजा अर्चना और मंगल कामना के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। राज्य सरकार की जो कल्याणकारी स्कीम है उसके अंतर्गत ये मतलब सर्व जन कल्याण की भावना इसमें निहित है और मैं समझता हूँ कि आज बहुत ही अच्छी पूजा अर्चना यहाँ आयोजित हुई है जिसमें सभी शहर के गणमान्य और माननीय MLA साहब ने भाग लिया है, सभी लोग शामिल हुए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और अब सुनिए देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त श्री गौरव सोनी ने अपनी बात रखते हुए क्या कहा।
3: आज राजस्थान सरकार के द्वारा संपूर्ण राजस्थान भर के सभी जिलों के अंदर और संपूर्ण उपखंडों में प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजन का आयोजन किया गया, आरती का, जिसमें आम जनता के कल्याण और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, प्रदेश में खुशहाली, उत्तम वर्षा इत्यादि सभी विषयों को लेकर के ये विशेष आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास से जो है बीकानेर जिले में जो है अपना बड़ा गणेश जी मंदिर नत्थूसर गेट के बाहर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधि, MLA साहिबान, प्रशासनिक अधिकारीगण, संभागीय आयुक्त साहब, ADM साहब इत्यादि पधारे हैं। इसके अलावा अन्य उपखंडों के जो मंदिर हैं, देशनोक करणी माता मंदिर है और अन्य इत्यादि मंदिरों में भी ये आयोजन किया जा रहा है और बीकानेर संभाग के सभी जो उपखंड हैं वहाँ पर देवस्थान विभाग के माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से और उपखंड प्रशासन के सहयोग से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
0: इस कार्यक्रम में आम और खास लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर इन्होंने क्या कहा।
4: मंचा जी, इसके लिए मैं पहले तो हम गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जन नायक उनको स्वस्थ रखे, समृद्धि दे। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करते हैं आगे भी भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे और हम जनता की आवाज़ सुने।
5: Myself उमा शर्मा, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 वर्ष पूरे किए अपने कार्यकाल के, मैं चाहती हूँ इसी तरह उनका कार्यकाल अच्छा चलता रहे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गणेश भगवान से, कि उनको खूब लंबी उम्र दे।
6: नमस्कार, राधा खत्री। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 12 साल हुए तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य और होता रहे।
7: सुधा आचार्य, ये भारत ही है जो संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में कार्य करते हुए पथ प्रदर्शन का काम करता है। पूरी सृष्टि में आज देख रहे हैं, जहाँ देखो आतंकवाद का कहर हो रहा है, जहाँ देखो मनुष्य एक दूसरे को काटने में लग रहा है, भावनाओं को आहत कर रहा है, लेकिन एक जो होता है वो सबको साथ लेकर के चलता है। इसी परिदृश्य को आप यहाँ पे देख रहे हैं, कितनी बहन भाई मेरे यहाँ पे आज इस मंदिर में है। हम तो वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर के गजानंद की पूजा करने में विश्वास रखते हैं।
0: अजीत फाउंडेशन में इन दिनों मिट्टी से सृजन कार्यशाला चल रही है, यानी मिट्टी को नई आकृतियां दी जा रही है। शहर के बच्चे उत्साह के साथ इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। यहां आए मुख्य कलाकार अनिल व्यास ने बताया।
8: मेरा नाम अनिल व्यास है
9: जी। मैं देख रहा हूं अजीत फाउंडेशन में यहां पर मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, कुछ आकृतियाँ दी गई है, क्या अनुभव रहा बच्चों के साथ आपका?
8: ये मेरा सेकंड टाइम है मैं अजीत फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ और कल हमने 3D में स्कल्पचर्स बनाए थे, मूर्तियाँ बच्चों ने बनाई थी आज राउंड में पॉट बनाएंगे बच्चे, पॉट्स जो पहले हमारे को जैसे मोहनजोदड़ो टाइम से भी हमारे को कुछ पॉट्स और मिले हैं, वही मिट्टी है, सेम वही कला है और इसी से बच्चों को जुड़ाव इससे बनता है। और कल इनका जो काम होगा वो 2D में होगा, एक बेस बनाएंगे और बेस के ऊपर उभार के साथ में, उसको 2D टेक्निक बोलते हैं, उसमें कल ये बच्चे काम करेंगे।
9: मिट्टी कौन सी है, किस तरह से आप उसको तैयार करते हैं?
8: ये जो कुम्हार लोग होते हैं जो जिस मिट्टी को का इस्तेमाल करते हैं, ये सेम वही मिट्टी है। ये मिट्टी जो होती है ये पहाड़ों से जब पत्थर टूट टूट के नीचे आते हैं नदियों के साथ साथ में, तो नदी किनारों पे जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, जो कुम्हार जिसके अपने बर्तन में बनाते हैं, चाक पे बनाते हैं, ये वही मिट्टी है और इसी से इन बच्चों से काम कराया जा रहा है।
9: मिट्टी जब आप लाते हैं वहाँ से, उसके बाद में उसको किस तरह से तैयार की जाती है ताकि वो एक अच्छी आकृति बन सके उसकी?
8: मिट्टी में ये चिकनी मिट्टी होती है, इसको पहले एकदम सुखा के और फिर इसको पानी में भिगा के इसको, और जैसे हमारा आटा होता है, आटा गूंधा जाता है, जैसे वो उस आटे की अगर आप उसमें उंगली डालेंगे तो वो हाथों में चिपकती नहीं है, सेम इसमें भी जब इसको गूंधा जाता है मिट्टी को और अगर वो हाथों में चिपक नहीं रही है तो इसका मतलब आप ये मिट्टी काम करने लायक है।
0: और अब जानते हैं क्या कहते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने मिट्टी को नई आकृति देने का कार्य सीखा भी और कुछ कर दिखाया भी।
9: भावना, ये मिट्टी की कुछ चीज़ें आपने बनाई, खिलौने वगैरह है ना, कैसा लगा, क्या क्या बनाया?
10: मैंने मिट्टी की डॉल बनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा।
9: आप जब बना रहे थे तब आपके हाथ भी खराब हो रहे थे, कैसा लगा कि ये तो गंदा काम है, ऐसा तो नहीं लगा?
10: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा।
11: तनीषा सेवक, यहाँ सीखने में मज़ा आता है, आर्ट्स सीख रहे हैं, संगीत सीखा, मज़ा आ रहा है यहाँ। वो कल हमने इंसान बनाए थे, आज हम बनाएंगे।
12: मेरा नाम शैलजा सेवक है और हम मतलब अजीत फाउंडेशन में हमें मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाने का भी वो थोड़ा मिल रहा है तजुर्बा। और कल हमने एक मतलब आदमी बनाया था और यहाँ पे बहुत मतलब समर कैंप्स में होते हैं जैसे संगीत, कंप्यूटर सीखना, मेहंदी बनाना या आर्ट्स, ऐसे बहुत तरह की यहाँ पे मतलब चीज़ें होती है और हमें सीखने का भी उसमें मज़ा आता है। मतलब हम जब सीखते हैं तो हमें सिखाने वाले भी होते हैं ना, वो मतलब अच्छे से सिखाते हैं, हमें तो अच्छा लगता है। हम तो कहें हम सुबह 12 बजे आके बैठ जाएँ, लेकिन ये सुबह 12 बजे होता ही नहीं है, 5 बजे होता है।
13: मेरा नाम दिशाचार्य है और यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं और अभी कल हमने इंसान बनाया था मिट्टी से, आज हमको पहले फ्लावर पॉट बनवाया और अब हम मिट्टी से वापस बर्तन और सीखेंगे। इस अजीत फाउंडेशन से हमारी बहुत मतलब छुट्टियों का यूज़ हो रहा है, उपयोग हो रहा है।
14: मेरा नाम मिट्टी बादानिया है और हमने अजीत फाउंडेशन आज से स्टार्ट करा है क्योंकि हम अभी जय हुए थे और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ

0: अच्छा लगता है। हम तो आज ही आए, पहले भी हम आते थे लेकिन सेम शोर खेलते थे, अच्छा लगता था। मेरा नाम तृप्ति जोशी है, मुझे अजित, मैं कभी से अजित फाउंडेशन में आ रही हूँ। मेरे पास अजित फाउंडेशन के बहुत सारे मतलब सर्टिफिकेट पड़े हैं। मैंने यहाँ पे संगीत सीखा है और मतलब आर्ट भी हुई थी उस टाइम, तो वो भी सीखा है और इस बार चालू है तो फिर आई हूँ मैं। मिट्टी की चीज़ों में पहले इंसान बनवाया और अभी ड्राइंग में बताया है कि मतलब वो पॉट बनाना है तो वो बनाया अभी हमने।
1: अजित फाउंडेशन के समन्वयक ने इस कार्यशाला के बारे में अधिक जानकारी देते हुए अपनी बात हमसे साझा की।
2: संजय जी, अजीत फाउंडेशन नित नए काम करता है, सृजन के काम खास तौर से, और इस बार छुट्टियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश जब चल रहा है तो समर कैंप के नाम पर आपने एक गतिविधि की है, तो क्या क्या यहाँ हुआ, कब से ये है और कितने दिन का?
3: ये समर कैंप्स में 3 दिवसीय मिट्टी से खिलौने बनाने की एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें अनिल जी व्यास नोएडा से आए हैं। वह खुद मूर्तिकार है और एक अच्छे कलाकार है। वह बच्चों को मिट्टी से अलग अलग प्रकार के खिलौने और अलग अलग प्रकार के पॉट बनाना वगैरह सिखा रहे हैं। मिट्टी को कैसे गूंदना है, उसको किस प्रकार से आकार देना है, वो सारा प्रैक्टिकल यहाँ पर बच्चों के साथ कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यशाला 3 दिन चलेगी, 10 से 12 जून तक ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
2: तो जब समापन होगा तो क्या कोई आप इनको जो है प्रमाण पत्र देंगे?
3: इस कार्यकाल के समापन अवसर पर एक तो हमने इस कार्यकाल के दौरान जो जो चीज़ें बनाई हैं, जो खिलौने बनाए हैं या जो पॉट बनाए हैं, उन सब की हम प्रदर्शनी करेंगे। साथ ही जिन बच्चों ने इस कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया है उनको हम प्रमाण पत्र देकर, सहभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे।
1: यहाँ काम करने वाले गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि वो इन बच्चों के साथ काम करते हुए स्वयं भी बहुत कुछ सीख रहे हैं।
2: आपका सहयोग बहुत रहता है, बहुत मेहनत आप करते हैं, क्या कहना चाहोगे? अभी जो कैंप चल रहा है और भी यहाँ गतिविधियाँ होती हैं,
4: मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को अच्छे अच्छे कैंप देखने को मिले हैं। सारे मतलब क्या है कि बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं।
2: कौन कौन सी गतिविधि, जैसे अभी मिट्टी का है, कभी कोई जो है आपकी किताबों का होता है, क्या क्या होता है?
4: ज़्यादातर तो चित्रकला का, वैसे ड्राइंग का तो लगता है वो भी है, और पिछले साल तो क्या संगीत का लगा था, वो भी बहुत अच्छा लगा, पूरा वो 1 महीने तक वो पूरा चला, वो भी बहुत अच्छा लगा।
1: श्रोताओं, इन दिनों विभिन्न स्थानों पर योगा के शिविर चल रहे हैं। आज आपको लिए चलते हैं बीकानेर में स्थित रामदेव पार्क में, जहां योगाचार्य नंदकिशोर शर्मा बच्चों को योग करवा रहे हैं।
5: ये जो पैरों के जो अंगूठे हैं ना, ये मस्तिष्क का पॉइंट है। हमारा मस्तिष्क कहीं है, अंगूठा कहीं है, उसी प्रकार जैसे चुच कहीं है, ट्यूबलेट कहीं है, पंखा कहीं है, चुच कहीं है, ऐसी कहीं है, चुच कहीं है, टीवी कहीं है, चुच कहीं है, इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क कहीं है और हमारे मस्तिष्क का पॉइंट चुच अपना अंगूठा है, इसको जोर से आपस में टकराइए।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए क्या कहा योगाचार्य नंदकिशोर शर्मा ने?
6: पिछले कई वर्षों से अनवरत जो हमारा छोटे छोटे बच्चों से लेकर के प्रत्येक आयु वर्ग के बालक बालिकाओं हेतु यहां पर निःशुल्क योग एवं खेलकूद संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को सनातनी संस्कारों के साथ साथ योग सनातनीय भावों के साथ नित्य अभ्यास कराया जा रहा है। बच्चों के लिए जो विशेष उपयोगी जो आसन हैं, योग है, बच्चों को बचपन से ही योग के प्रति, सनातन के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। और बचपन से जब हम नशा मुक्त जीवन जीते हैं, बच्चों को बचपन से ही नशे की प्रवृत्तियों से दूर रहने का आग्रह किया जा रहा है, उनको नशे से बचने के लिए। बच्चों में छोटी छोटी आदतें जैसे ये जो गुटके सुपर इत्यादि से शुरुआत होती है, तो बच्चों को यहाँ पर हम प्रेरित करते हैं कि आपको नशे से बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है, इसी प्रकार से हम बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप स्वयं देख पा रहे हैं कि कितनी श्रद्धा के साथ करें, छोटे छोटे बच्चों में भी मुझे बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे जो इन छुट्टियों का, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोकर के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ बच्चे उपस्थित हैं जो 5:30 बजे यहाँ उठ कर के आते हैं। उनके उनके मन में, उनके उनके पेरेंट्स में, हृदय में भी ये भाव है कि नहीं, हमारे बच्चे अब आगे बढ़ें, योग आयुर्वेद स्वदेशी का उनका भाव हो,

0: प्रकार शिविर है, उसमें हमारे बच्चे भाग लेकर के अपने जीवन को और उन्नति की ओर आगे बढ़ाएं, बच्चों में संस्कार हो। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत तो बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान में ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है कि हम बच्चों को संस्कारित कैसे रखें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हमने ऐसे छोटे आयामों के साथ बच्चों को संस्कारित करने के लिए ऐसे अभियान चलाएं, और ये केवल योग शिविर मात्र नहीं है, हम यहाँ बच्चों को स्वच्छता अभियान से लेकर के जागरूकता रैली से लेकर के सांस्कृतिक आयोजन, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से लेकर के विभिन्न आयामों प्रकल्पों का हम यहाँ पर आयोजन करते हैं।
1: योग करने वाले ये बच्चे इस पार्क में सुबह 5:30 बजे आते हैं, क्या कहते हैं इनके अनुभव?
0: आपका नाम?
2: मेरा नाम खुशी शांखला है और मैं नतुसरवास में रहती हूँ।
0: और यहाँ आप जब सुबह आते हो तो क्या आप कौन कौन से योग करते हो, कैसा लगता है?
2: यहाँ पे हर तरीके का योग होता है, जैसे बच्चों के लिए बच्चों का, और जैसे कोई युवा आते हैं तो उनके लिए युवाओं वाला, और कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनके लिए प्राणायाम और ये सब। पहला प्राणायाम मेन बुजुर्ग के लिए होता है। प्राणायाम में जितने भी आपके लंग्स में, फेफड़ों में कोई भी तरह की दिक्कत होती है, नशे से, किसी भी चीज़ से, सारी हल हो जाती है, सही हो जाती है।
0: कैसा लगता है, क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो अभी घर में आराम कर रहे हैं?
2: मैं यही कहना चाहूँगी कि बस एक बार सुबह उठने में थोड़ा सा आलस आता है बच्चों को, मैं भी एग्री करती हूँ क्योंकि मैं भी इस कंडीशन से आई हूँ, पर मैं ये जरूर कहती हूँ यहाँ पे आने के बाद वो आलस खत्म हो जाता है, मैं 100% श्योर हूँ, चाहे कोई भी बच्चा।
0: क्या नाम आपका?
3: मेरा नाम योगिता सांखला है। मैं यहाँ पे सुबह उठ के आती हूँ, योग करने से हमारा शरीर अच्छा होता है, कोई बीमारी नहीं लगती। अगर कोई आपको बीमारी है तो आप योगा ज्वाइन करो, हर एक चीज़ की योगा होती है वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए।
0: कितने साल की हो आप?
3: मैं 16 की हूँ।
0: लोग तो बहुत बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी योग नहीं करते हैं, आप में अभी से ही आदत होगी तो क्या फ़ायदे हैं इसके?
3: इसके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि हमारा लचीला शरीर है, कोई बीमारी नहीं होती। अगर चलो हो भी जाती है तो योगा ज्वाइन करने से कोई बीमारी नहीं होती, स्वस्थ रहते हैं, खाना वाना सब कंटिन्यू होता है।
0: अभी छुट्टियां इसलिए आ रहे हो आप, क्या छुट्टियां जब स्कूल खुल जाएगी तब भी आओगे या घर पे करोगे?
3: नहीं, हम एकेडमी भी जाते हैं, घर पे भी करते हैं।
0: शुभ नाम आपका?
4: मेरा शुभ नाम सोभा गच्छावा है। मैंने योगासना भारत से स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल जीता है और नेशनल लेवल में सिल्वर मेडल जीता है योग के क्षेत्र में।
0: योग में?
4: हाँ।
0: तो ये आपको कैसे मौका मिला, कैसे पता लगा कि आपको वहाँ जाना है?
4: मैंने यहाँ पे पार्क में ऐसे ही स्टार्ट किया था मनोरंजन के लिए, फिर यहाँ पे आई तो मेरे को पता चला योग में भी एक आगे कुछ है करियर, तो मैंने यहाँ से कंपटीशन खेला, फिर ऐसे से आगे चलती गई।
0: ये जो कंपटीशन हुआ ये कौन सी संस्था ने करवाया, कैसे आपको इसमें कहीं अप्लाई किया या क्या हुआ?
4: ये ना योगासना भारत का कॉम्पिटिशन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, तो हमारे सर भवानी शंकर जी सांखला ने ना ये वाला फॉर्म भरवाया मेरा, तो मैंने ये कंपटीशन खेला, इससे आगे आगे चलती गई।
0: मतलब पहले जिले स्तर पर हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे?
4: हाँ।
0: और तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या रहा और बाद में स्टेट में क्या रहा?
4: डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा अच्छा रहा, फिर मैंने ऐसे ही स्टेट लेवल में आगे खेला, मेहनत की, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके स्टेट लेवल मैंने कंप्लीट किया, पार किया। उसके बाद मैंने नेशनल में और ज़्यादा मेहनत की ताकि मेरे को कुछ भी हो मिल जाए मेडल, कुछ भी मेडल मिले, पर मेरे को मेडल मिला, सिल्वर मेडल।
1: सहायक योगाचार्य श्री भवानी शंकर सांखला ने बताया कि 15 वर्षों से योग सिखाया जा रहा है।
5: पिछले 15 वर्ष से इस योग के क्षेत्र में जुड़ा हूँ और 15 साल से हम बीकानेर के अंदर एक छोटे बच्चों को संस्कार और योग कैसे जोड़ रख सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर, हम बच्चों को एक बाल संस्कार स्वदेशी खेल को शिविर के माध्यम से 2 घंटे का प्रशिक्षण कार्य चलता है और इसमें कम से कम 100 से ऊपर बालक बालिकाएं भाग लेती है और इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो बच्चे घर पर सो के अपना समय व्यतीत करते हैं उनको उस समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और पूरे साल की ऊर्जा इस योग के माध्यम से उनके अंदर संचरित की जाती है जो पूरे साल उनको स्वस्थ रखती है, मानसिक स्वस्थ रखती है और अपने शरीर से भी विकास होता है उनका। और हम चाहते हैं इस योग शिविर के माध्यम से एक ऐसा मैसेज देते हैं, अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं जैसे पर्यावरण संबंधी, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, योगा डे पर स्पेशल योगा डे में जो क्या होता है आज 21 जून जो पूरा भारतवर्ष मना रहा है और भारतवर्ष

0: इसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड के 72 से 73 देश एक साथ 21 जून को योग करेंगे और इस भारतीय संस्कृति का इतना अच्छा बड़ा प्रसार हुआ है। और अभी अहमदाबाद में आयोजित हुई पहली वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप जिसके अंदर इंडिया ने 104 मेडल प्राप्त किए हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप में योग का जो छवि रखता है वो भारत ही है और भारत ने ही इस योग को पूरे वर्ल्ड को दिया है। और आगे मैं यही कहना चाहता हूँ, हर परिवार हर घर योग करे, 21 जून को हर घर अपने घर पर योग जरूर करे।
1: श्रोताओं, अब हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जिससे हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जी हाँ, बीकानेर में एक अभियान चल रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। श्रोताओं, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद गर्भाशय का कैंसर यानी सर्जिकल कैंसर सबसे ज़्यादा यानी तेजी से बढ़ रहा है, जो HPV के कारण होता है। भारत सरकार ने इसके बचाव के लिए विशेष HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। स्थानीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 3 के प्रभारी डॉक्टर गौरव शर्मा से हमने इस संबंध में बात की, आप भी सुनिए संपादित अंश।
2: देखिए, HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक बहुत ही सामान्य वायरस है। यह मुख्य रूप से महिलाओं में गर्भाशय के मुंह का कैंसर करता है और आम भाषा में इसको कह सकते हैं तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। भारत में स्तन कैंसर के बाद महिलाओं में सर्वाधिक होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि यह सिम्टम आने में 10-1 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पर वैक्सीन लगवा कर इससे पूरी तरीके से बचा जा सकता है।
3: जी, एक बात यहाँ और आती है कि जैसे अभियान की हम बात करें तो डॉक्टर साहब, इस अभियान के तहत यह टीका किस उम्र की बच्चियों को लगाया जा रहा है और इसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है?
2: भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की सभी किशोरियों को यह HPV टीका लगाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह टीका पहले से ही प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स में उपलब्ध है, लेकिन वहाँ यह बहुत महंगा मिलता है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इस एक टीके की कीमत है। इसकी एक खुराक हजारों रुपए की होती है, इसे हर परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सरकार ने हमारी बेटियों को इस जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए इसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त कर दिया है।
3: डॉक्टर साहब, जो पेरेंट्स है या जो पेशेंट है या आम लोगों में एक भ्रांति रहती है, जब भी कोई नया टीका आता है, कोई तरह की बात होती है तो एक भ्रांति रहती है कि क्या हम इसको लगवाएं नहीं लगवाएं, तो आप क्या मानते हैं कि 14 से 15 साल के उम्र की जो बच्चियां हैं उनको ये टीके किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा है, या इस उम्र में ये टीका लगाने के क्या फ़ायदे हैं?
2: मेडिकल साइंस के अनुसार HPV वैक्सीन सबसे बेहतरीन असर तभी दिखाता है तब इसे किशोरावस्था यानी 14 से 15 वर्ष में लगाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संपर्क इस उम्र के बाद होने का चांस रहता है। तो इस उम्र से पहले अगर हमें लगा लिया जाए इन बच्चियों में तो यह बच्चों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और जिससे भविष्य में इस वायरस की वजह से जो कैंसर होने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस अवस्था 14 से 15 में लगाना सर्वश्रेष्ठ है।
3: कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये नया टीका है या इसकी सुरक्षा को लेकर के इस्तेमाल से पहले चिकित्सा विभाग है उसने कोई जाँच वगैरह की है?
2: मैं आपको बता दूँ, HPV टीका कोई नया नहीं है। दुनिया भर में यह वैक्सीन पिछले 15 से अधिक वर्षों से इस्तेमाल की जा रही है। साल 2006-07 से ही कई विकसित देशों में इसे बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। अब तक दुनिया भर में करोड़ों खुराकें दी जा चुकी हैं। जहां तक सुरक्षा जांचों का सवाल है तो इस टीके को मंजूरी देने से पहले उसके बाद भी लगातार बेहद कड़े वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजारा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों ने इसके डेटा की गहन समीक्षा की है। सभी सुरक्षा जांचों का निष्कर्ष यही है कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और अत्यंत प्रभावी भी है। साथ ही छोटे बच्चों में भी हम

0: वैक्सीन लगाते हैं तो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट टीके लगाने की जगह दर्द होना जो सामान्य है वो हर टीके में हो सकता है। फिर भी मेरी सलाह आपको यह है कि टीका लगवाने से पहले आप अपने घर के नज़दीक स्वास्थ्य केंद्रों सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं, वहाँ उपलब्ध डॉक्टर से संपर्क करें एवं इस टीके को लगवाने से पहले उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही इस टीके को लगवाएं।
1: एक बात और यहाँ डॉक्टर साहब की, आजकल सोशल मीडिया को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर बात को जो है अलग ढंग से जो है पेश किया जाता है, तो लोग उसको देख करके भी उनका होता है कि ये पता नहीं ये टीका क्या है, इसका हम लगवाएं नहीं लगवाएं, तो क्या कहना चाहते हैं आप?
0: सोशल मीडिया पर चल रही बिना सिर पैर की अफवाहों और झूठी खबरों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। यह बातें फैलाने वाले एक भी व्यक्ति मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सभी क्वैक्स हैं। जैसे मैंने बताया, यह टीका पूरी तरह जांचा परखा और सुरक्षित है। जैसे बचपन में हम बच्चों को पोलियो, काली खांसी और खसरे का टीका लगवाते हैं, यह भी वैसे ही सुरक्षित वैक्सीन है। टीका लगवाने के बाद हल्का दर्द, मामूली बुखार आ सकता है, जो वैक्सीन में बहुत सामान्य है। इसका बच्चों के भविष्य के स्वास्थ्य या क्षमता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, मैंने अपने घर से ही इस टीके की शुरुआत की है। तो अगर मैं मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, एज ए डॉक्टर हूँ, अगर मैंने अपने ही घर से इसकी शुरुआत की है, तो मैं अपनी सभी बहनों, छोट किशोरी बालिकाओं को मेरा निवेदन है, आप भरोसा करिए, साथ ही आप इसके बारे में जानकारी लें, लेकिन सही पर्सन से जानकारी लें जो इसका सही नॉलेज रखता हो। उसके बाद एक अपना निर्णय लें और जो आपको सही लगे वो कराएं। बट मेरा निवेदन है आपसे, आप इसे लगाइए, बच्चों के भविष्य के लिए सही है। आजकल के जो हमारा खान पान रहन सहन है, भारत में कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हम सही समय पर इसका उपाय और बचाव कर लें तो ये बहुत सही होगा हमारी आने वाली बच्चियों के लिए। फिर भी मेरा निवेदन है, आपको जो सही लगे तो इसको ज़रूर लगवाएं।
1: बीकानेर की अगर हम बात करें, तो बीकानेर में कौन से ऐसे खास खास स्थान हैं जहां इसकी जानकारी या टीका लगवाने के लिए जो है पेरेंट्स पहुंच सकते हैं?
0: बीकानेर के सभी सरकारी अस्पतालों, PBM अस्पताल, का बच्चा अस्पताल, जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या डिस्पेंसरी में यह HPV टीका पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसकी जानकारी और लगवा सकते हैं।
1: में एक कोई संदेश आपके जुबान से, क्योंकि डॉक्टर जब बोलता है तो वो सीधा उसका असर होता है, तो हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश?
0: संदेश यही है कि अफवाहों के डर से अपनी बेटी के सुरक्षित कल को दांव पर न लगाएं। कैंसर का इलाज करने से बेहतर है कि हम उसे होने ही ना दें। आगे आएं, अपनी 14 और 15 साल की बेटियों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं और उनका HPV टीकाकरण जरूर लगाएं। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए।
2: तो ये था आज का बीकानेर दर्पण, निश्चय ही आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्री रेमंत राम लेघा की और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बीकानेर दर्पण। इतिहास के झरोकों से झांकती हुई हवेलियां, आधुनिक साहित्य की नई इबारत, हमारा यह शहर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हुए आज आपके साथ रूबरू हुआ। इस बीकानेर दर्पण अध्याय की 148वें अंक में आपसे बातचीत कर रहे थे श्री महेश उपाध्याय, यानी वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का, संयोजन अमित सिंह का था और प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा की। सुनते रहिएगा बीकानेर दर्पण, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से शनिवार रात्रि 8 बजे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है सांवरलाल रंगा की आवाज में गया ये हनुमान भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

ਤੁਰ ਹੁਣ ਅਨੁਖੇ ਬੰਧਵ ਬਿਠਾ ਜਬੂ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਬਧੋਮਣਾ ਬਧੋਮਣਾ ਘਰ

0: लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुना मुल्तान खान और साथियों की आवाज़ में मूमल। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके पश्चात न्यूज़ एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति

0: इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

0: मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई GOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए

0: पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also join

अभी श्रोता सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से News@9। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आँखों के बारे में बॉलीवुड में बहुत कुछ कहा गया है, और कुछ तो ऐसे डायलॉग्स हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। आपको बताता हूँ, तेरी आँखों के जादू से तो खुद नहीं है वाकिफ, तेरी आँखों के जादू से तो खुद नहीं है वाकिफ, ये उसे भी जीना सिखा देता है जो मरने का शौकीन हो। एक और डायलॉग, जैसे कुछ अफसानों को लफ्ज़ों से ना बयां कीजिए, कुछ अफसानों को लफ्ज़ों से ना बयां कीजिए, नज़रें कातिलाना हैं हुजूर।

0: गुलाम फिल्म से कुमार शानू का याग्निक की आवाज़ में इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होते हैं। आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली के संस्कृति
1: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
2: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो

0: और तपा के दिनों में कैसे आती है हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी। तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुक कर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंड पंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है, इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5,000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो

स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे और ये प्रयास देश में दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर,

0: आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम। आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
0: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म, मजहब, जाति, कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय हो।

0: का कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, फिर वो बोला कि यार

0: कुल्फी रख देते हैं नाम, लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है,
1: संभव जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
0: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मूरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
1: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
1: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
1: आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट्स को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
1: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेड अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कंट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक, पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
1: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं?
2: जी हैं,
1: रादर देन योर ओन कंपोजिशंस।
2: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
2: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव्ड इट।
1: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेनस्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

जुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana ka jo spandan hai, jo lay hai, wo nirantar hai, wo shashwat hai. Aapko vyakhya milti hai, kis tarah se aapke andar wo emotions aur bhavnaye hai. Aur maine do line likhi thi Kaikeyi ka prasang, ki Kaikeyi ke karan Ram van gaye, aur isi karan wo Ram ban bhi gaye.
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है, और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है, और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे।

0: कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
1: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha, the...
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
1: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani, composition Vatapi, composed by Muthuswamy.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। कॉम्पोजिशन निन्नू वीणा रामा, कंपोज्ड बाय त्यागराजा, इज सेट टू रूपकम।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल हमारो चैनल है। रात्रि के 11 बजते हैं। अब से कुछ देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को

0: वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force, IAF, has expressed